हो जावे इनके द्वारे, पापी से पापी भी तारे, भव सागर से पार उतारे। तो इनको नीचट अरे हाँ के इनको नीचट

फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

जब भय बूढ़े ओ जब धन धूड़े मिले कामार। बाल भय भूरे गर्भ भय चूरे अब का करे लाल। बाल भय भूरे गर्भ भौ चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी में।

हमारो नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

ई कॉलेज गो में हरी नाम से जन्म सफल कर लियो मन से भजलो रे हरी तन से भजलो रे हरी।

ओची नैया जवानी पन में।

मेरे सारे दिने अरे भजन करे तेज विशाल जी ने लंका राज दिलाए।

0: शुभकर बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष कार्यक्रम
1: आजीविका में
2: बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, आजीविका की बात जहाँ पर आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आजीविका है क्या। लेकिन हमने अपने साथियों को पहले ही बता दिया था कि आजीविका यानी कि हमारी,
2: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, और आप कहना चाह रही हैं कि आप अपनी आय को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं
1: जी,
2: और कैसे हमारे श्रोता साथी, चूंकि बुंदेलखंड में हम आप देख रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे श्रोता साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं अपना स्वयं का धंधा करके।
1: जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि दूसरों की मजदूरी करने से अच्छी है कि हम अपना खुद का एक छोटा सा धंधा लगाएं, यानी कि व्यवसाय लगाएं, जिससे हमें दो पैसे की आमदनी होगी।
2: बिल्कुल वर्षा जी, और बहुत सारे जब हम लोगों के पास मिलने जाते हैं तो बहुत सारी हमें सफल कहानी हमें वहाँ पर मिलती है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे सफल लोग निकल के आ रहे हैं जिन्होंने रेडियो बुंदेलखंड पर आजीविका का कार्यक्रम सुनकर अपने खुद का व्यवसाय को शुरुआत की है। तो ऐसे लोगों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उनकी सफल कहानियों को बताते हैं। जैसे कि हमने बताया था, पहले ही बताया था, सतीश साहू जिन्होंने अपना दूसरों के यहाँ नौकरी करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, तो एक ना एक कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आय को बढ़ाया है, दूसरों के अपेक्षा अपने घर की आय को और बढ़ोतरी की है।
1: जी हाँ, जैसा कि साथियों उन्होंने बताया था कि हम जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे, वो ऐसे में उन्हें क्या क्या परेशानी होती थी, एक तो टाइम से नहीं पहुँचते थे, घर टाइम से नहीं आ पाते थे, और दूसरी चीज उन्हें तनख्वाह जो मिलती थी, जो पैसा महीने का दिया जाता था, वो समय पे नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम अगर करते हैं तो अगर वो पैसा हमें समय पे ना मिले तो किसी काम का नहीं होता है हमारे।
2: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, जब तक हमें स्वयं का व्यवसाय, चाहे वो हम 2 घंटे अपने लिए क्यों नहीं दें, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आप देखते हैं कि 24 घंटे में से 12 घंटे दूसरों के मजदूरी करने के बाद हमें तनख्वाह वो 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए इस तरीके का देते हैं। हम उनके लिए जब मेहनत करते हैं, क्यों ना हम अपने लिए, खुद के लिए इतनी सारी मेहनत करें

0: सफलता को हम चलते चले जाएंगे और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोग हमें नाम से पहचानेंगे।
1: बिल्कुल, और सफल जब ही होंगे जब आप सोच लेंगे कि हमें करना क्या है आखिर, और जब आप करने का निश्चय कर लेंगे तो फिर हमें आप जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
0: बिल्कुल वर्षा जी, और इस कार्यक्रम में हम दोस्तों को बात कराएंगे हीरालाल कोरी जी से, जिनसे बात करेंगे कि उन्होंने तौलिया का व्यवसाय, चूंकि बहुत सारे हमारे श्रोता साथी सोचते होंगे कि कुछ जातिगत जो व्यवसाय रहते हैं वो उनकी ही जाति के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भी जातिवाद से हटकर उस व्यवसाय को सोचना चाहिए।
1: यानी कि आपके कहने का मतलब है मनीष जी कि कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि मटका बनाना, तौलिया बनाना, ये बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये इसी जाति के लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको उस काम को करने में रुचि है तो आप बिल्कुल ये सोच हटा दीजिए जातिवाद की कि ये यही जाति का करेगा, हम भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अगर एक मटका बनाना जानते हैं और हम कुम्हार नहीं है, तो क्या हम अपनी रुचि को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम उससे दो पैसे नहीं कमा सकते हैं? क्या हम अपनी रुचि को आगे ले जाकर लोगों को ये बताएं कि जातिवाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल वर्षा जी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तौलिया का व्यवसाय, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि मऊ रानीपुर में सबसे ज्यादा तौलिया का व्यवसाय होता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर अपने आसपास में तो निवाड़ी में बहुत ज्यादा तौलिया का व्यवसाय चलता है। तो ऐसे में किस तरीके से हमारे युवा साथी इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो इस चर्चा को सुनने से पहले हम एक गीत के साथ हम आपको मनोरंजन कराते हैं, और गीत के बाद आपको सीधा हम निवाड़ी ले चलेंगे और जहां पर हीरा लाल जी हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो आइए इसी क्रम में एक हम गीत को सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और दोस्तों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना जिसे गा रहे थे दयाशंकर और उनके साथी।
1: जी हाँ, अब हम आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि मनोरंजन के बाद हम आपको सीधा ले चलेंगे निवाड़ी हीरा लाल जी के पास, जो कि आपको बताएंगे कि तौलिए का व्यवसाय किस तरह से किया जाता है और क्या क्या समस्या उनको आती है और क्या क्या सावधानी इसको करने में रखनी चाहिए।
0: तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अपना परिचय दें पहले।
2: हीरा लाल, पूरी कालपुरा निवाड़ी।
1: अच्छा, तो हीरा लाल जी आप क्या करते हैं इस समय पे?
2: हम तौलिया के काम करते हैं, क्या मशीनें लगाए हुए हैं पावर लूम।
1: अच्छा, तो जैसे शुरुआत बात करें अगर, तो आप तौलिया कैसे, कहाँ से इसका माल लाते हैं, कच्चा माल कहाँ से लाते?
2: कच्चा माल आता हमारा रानीपुर से।
1: अच्छा, कैसा, किस हिसाब से लाते हैं?
2: जैसे धागा है वो तो 100 रुपए किलो भी आता है, 150 भी आता है। अच्छा। हर प्रकार का धागा खरीद के फिर बेलन भी भरवाते हैं।
1: अच्छा, तो इन सब में कितना खर्चा आ जाता है
2: आपको? आप बेलन भराई जैसे 5000 के आसपास तो बेलन भर जाता है। अच्छा। और फिर धागा उसके बुनने के लिए, माल बनाने के लिए वो अलग खरीदना पड़ता है।
1: हाँ। तो ये सारा सामान आपको वहीं से
2: रानीपुर मिल जाता है।
1: अच्छा, फिर वहाँ से लाने में कैसा क्या आप
2: लाती क्या? जैसे इधर से गाड़ी जाती है, गाड़ी में आता है माल,
1: गाड़ी में आता है। फिर वो धागा यहाँ लाने के बाद आप क्या करते हैं उसका?
2: उसका धागा ले जाने के बाद पावर लूम पे जैसे बेलन रख दिया और धागा हाथ से काड़ी भरती है।
1: अच्छा।
2: उसके बाद बस पावर लूम पे काम करो, कपड़ा बनने लगता है।
1: कपड़ा बने, कितने लोगों को आप लगाए हुए हैं?
2: हम जैसे एक मजदूर लगाए हुए, खुद करते हैं 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं।
1: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए आप नहीं करते तो कितने लोगों की जरूरत पड़ती है?
2: जैसे 2 लोगों की पड़ेगी, जैसे 3 पावर लूम लगाए हुए हैं, घर का धंधा है जी।
1: अच्छा,
2: ज्यादा तो लगाए नहीं हुए हैं, जैसे ज्यादा लगाओ मशीन है तो ज्यादा मजदूर लगेगा।
1: अच्छा।
2: जैसे 3 पावर लूम लगी हैं तो 2 मजदूर चल जाते हैं इसमें।
1: अच्छा, तो एक दिन में कितना आप बना लेते हैं तौलिया की बात करें तो?
2: एक दिन में तौलिया बन जाती है 40 एक मशीन पे।
1: एक मशीन पे 40
2: 40 तौलिया बनती है,
1: पूरी कम्प्लीट हो जाती है?
2: कम्प्लीट हो जाती है।
1: अच्छा, और एक महीने में
2: आप इसका हिसाब लगा लो, जैसे 40 लगी एक दिन में तो थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाएगा। ये तो पहले का है, थोड़ा कभी लाइट भी नहीं रहे, कहीं कुछ वजह है, इस हिसाब से प्रोडक्शन कम नहीं हो सकता।
1: और जो मशीन आप लगाए हैं उसमें लाइट का कैसा क्या कनेक्शन आपने करवाया?
2: हमारा कनेक्शन है 3 फेज का कनेक्शन कराया। हाँ।
1: तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता है, जैसे आप कनेक्शन भी करें वो भी बिल भरना पड़ता है?
2: हाँ, क्यों नहीं मिलता, वो तो इतना तो मिल ही जाता है यदि परिवार चलाने युग।
1: अच्छा, अपना परिवार चलाने युग। और जो व्यक्ति आपके यहाँ लगा हुआ है मजदूर,
2: उसका भी परिवार चल जाता है?
1: कितना उसको देते हैं?
2: उसको जैसे उसका हो जाता है 6 दिन में 1.5 हजार के आसपास का।
1: अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे तौलिया बनाने से पहले?
2: तौलिया बनाने से पहले क्या, जैसे पहले तो हम जैसे कोई दुकान

0: दुकान टेलरिंग की खोली थी मार्केट में, सिलाई का काम कर रहे थे। फिर दिमाग में आया कि पावर लूम लगा लो घर में, तो पावर लूम लगा ली।
1: अच्छा, तो मशीन आप जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे जी? पावर लूम
0: ये मशीन ऐसा है कि जैसे इधर की इधर व्यक्ति रहती है, कोई नहीं करता है धंधा, कोई कुछ और बदल देता है, तो इधर की इधर मशीनें मिल जाती हैं।
1: अच्छा, नहीं तो अगर जैसे किसी को खरीदना हो जो मशीनें तो कहाँ से?
0: तो ये टांडा वगैरह जाना पड़ेगा, टांडा में है।
1: ये कोई समूह के द्वारा मिलती है या फिर?
0: हाँ, ये समूह के द्वारा भी मिलती है। अभी रानीपुर में जो है यूपी में, आपको सरकार ने दी है 64 की मशीनें बड़ी बड़ी, और मकान बनाने के लिए लगाने के लिए व्यवस्था पैसा दिया है, 2.5-3 लाख रुपया दिया है। ये समूह द्वारा भी मिलता है, सरकार भी दे देती है।
1: तो समूह द्वारा अगर कोई लगाना चाहे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे?
0: हाँ, समूह द्वारा
1: सरकार पैसा देती है।
0: हाँ, उससे ज्यादा मशीनें मिल जाएंगे, उसको पूंजी भी मिल जाएगी, वो घर का बिजनेस करने लगेगा।
1: अच्छा, अब आपकी मार्केटिंग की बात अगर करें तो आपका बाजार कहाँ होता है? आप कैसे इसको बाजार में सेल करते हैं?
0: हम लोगों की मार्केट ये ऐसा है कि व्यापारी बने हुए हैं बाहर के, तेजरी से गांठे पैक हो के चली जाती है तैयार होके माल।
1: पूरी कंप्लीट या फिर?
0: पूरी कंप्लीट, मैं फ्रेश फिनिशिंग होके तैयार। अच्छा, पक्की बन जाती है। बाहर जाता है, राजस्थान जाता है, भोपाल चला जाए, बहुत जगह जाता है माल। तो
1: अच्छा, तो आपको महीने में कितना इसमें प्रॉफिट हो जाता है?
0: महीने में वही है 15-20 हजार रुपए की कमाई पर बाल चलाने लगभग।
1: अच्छा, इसके अलावा आप और क्या करते हैं?
0: बस इसके अलावा क्या है, वही काम है।
1: अच्छा, कितने घंटे आप देते हैं इस काम में?
0: मैं पूरा लगा रहते हैं, वो तो 10 घंटे करीब काम देना पड़ता है।
1: जैसे सुबह से उठे तो सीधा?
0: बस उसी में, वही काम है और है क्या।
1: अच्छा, अगर कोई और लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसको क्या क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए?
0: और कोई लगाना चाहे तो सावधानी क्या, उसको पावर लूम चलाना सीखना पड़ेगा। जैसे नहीं जानता है तो उसको सभी सीखना पड़ेगा, तो धागे का काम है, तैयारी का काम है।
1: आपकी बात अगर करें तो आपने कहाँ से सीखा, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी?
0: ट्रेनिंग क्या, हम इस काम को नहीं जानते थे। जैसे पावर लूम लगा लिए, कारीगर लोग कर रहे हैं काम, सुधारना भी नहीं जानते थे मशीन, तो वो धीरे धीरे कारीगर लोग चलाए, हम भी सीख गए।
1: बस पहले कारीगर लगाया?
0: हाँ, कारीगर लगाया, उन्होंने किया काम। जैसे बिगड़ गई मशीन तो मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री को देखा ये किस प्रकार से उधारता है, तो अपन देखते देखते अपन भी होशियार हो गए।
1: अच्छा, जैसे कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें परेशानी आती है, कोई ना कोई दिक्कतें आती है, तो आपको ऐसी क्या क्या परेशानी आई?
0: बहुत सी परेशानी आई थी हमको, जैसे उसमें कुछ जानते ही नहीं थे, थोड़ा भी कुछ बिगड़ जाए, थोड़ा चमड़ा टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो मिस्त्री को पकड़ते थे, उसको पैसा देना पड़ता था।
1: अच्छा, और आप अगर बिगड़ जाए तो?
0: आप तो खुद कर लेते हैं,
1: खुद कर लेते हैं। अच्छा, सब समझ हो गई है?
0: सब समझ हो गई है।
1: अच्छा, इसमें जगह कितनी की जरूरत पड़ेगी? जैसे अगर कोई लगाना चाहे तो उसको जगह की कितनी जरूरत पड़ेगी?
0: जगह के लिए शायद कोई 2 मशीन लगाना पड़े या 3 लगाए 6 लगाए, उस हिसाब से जगह लगती है। जैसे 12x12 के कमरे में 2 मशीनें लगती है, समझ लो आप, और ज्यादा मशीन है तो उस हिसाब से जगह चाहिए।
1: तो अभी आप 2 मशीनें लगाए?
0: हम 3 लगाए हुए।
1: अच्छा, और अगर कोई खुले माल में आपसे लेना चाहे, जैसे 1 तौलिया 2 या 3 4 5 ऐसे में आप बेचते हैं?
0: दे देते हैं।
1: अच्छा, कितने की 1 तौलिया जाती है?
0: जैसे तौलिया कपे के ऊपर है, 12 रुपए की भी, 15 की भी है, 35 की भी है, ये तो वेरायटी अलग अलग
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।

0: फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आपने इस बातचीत को सुना और जो हीरा लाल जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं तौलिया का व्यवसाय करके, तो हमें भी इस व्यवसाय को अपनाना चाहिए और अपनी आय को बढ़ाना चाहिए।
1: हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तौलिये का ही व्यवसाय करना चाहिए। इससे मतलब ये होता है कि आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आपको किसी भी काम को करने में अच्छी लगन हो, अच्छी पकड़ हो, आप सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और वो काम खुद का होना चाहिए, तो आप वो जरूर करें और हो सकता है कि उसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और मदद करने के लिए चूंकि आपको लगता है कि हमें परेशानी आ रही है ट्रेनिंग्स के लिए, तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जो ट्रेनिंग्स इन सारे व्यवसायों के लिए कराती है, तो आप जुड़िएगा हमसे और बात करिएगा और इस व्यवसाय संबंधी बातचीत करने के लिए हम आपको फोन नंबर दे देते हैं। फोन नंबर है हमारा 94-25-14-17-26।
1: श्रोता साथियों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि रेडियो बुंदेलखंड बार बार आजीविका से जुड़ी हुई बातों पर क्यों जोर दे रहा है, तो आपको बता दें कि हम देख रहे हैं कि जब हम फील्ड पर जाते हैं नुक्कड़ नाटक या नैरो कास्टिंग के माध्यम से, तो देख रहे हैं कि अपने गांव में जितनी

0: वहाँ क्या है कि वो लोग पलायन कर गए हैं, यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए दिल्ली चले गए हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा आखिर? हम लोग कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें बाहर जाने से कितनी समस्या होती है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, और जब हमारे बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे तो उन्हें कितनी बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आज मजदूरी कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे भी आगे चलकर मजदूरी ही करें, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो हो सकता है वो कुछ अच्छी नौकरी करें या फिर अपना खुद का धंधा करें या रोजगार लगाएं कुछ भी। तो इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय लगाइए और अपनी आजीविका को अच्छे से चलाइए।
1: बिल्कुल वर्षा जी, आप एक बात हम इसमें और जोड़ेंगे, क्योंकि हम आप देखते हैं कि जब हम दूसरों की मजदूरी करने के लिए यानी यहाँ से हम पलायन करते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो शिक्षा पर, उनकी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि बच्चों पर सबसे खासा असर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि मजदूरी का बेटा मजदूरी करेगा, यानी मजदूर करने वाला व्यक्ति का बेटा मजदूरी ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मजदूर करने वाले का बेटा इंजीनियर बन सकता है, मजदूर करने वाले का बेटा डॉक्टर बन सकता है, सारे जो रहते हैं मजदूर करने वाले लोग आगे चलकर बड़ा अपना, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अपने पढ़ाई का स्तर जो रहता है, हम और आप देखते हैं कि पढ़ाई का स्तर जो, अब हम बुंदेलखंड को देखें तो बच्चे जो मजदूर करने के लिए चले जाते हैं साथ में, तो उनका पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम हो जाता है, तो अशिक्षित होने के कारण उनको बहुत सारी समस्या आती है।
0: जी हाँ साथियों, तो इसीलिए हमारी बात पर गौर फरमाइएगा कि हम जो आजीविका कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, इस पर हमें जरूर अपने सुझाव और फीडबैक दें।
1: बिल्कुल, और इसके लिए आप पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम और छतगेला के पास ओरछा।
0: साथियों, अब हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय होता है, लेकिन आप अपने सुझाव, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हो या फिर आपने भी इससे कुछ सीख ली हो, अपने जीवन में थोड़ा सा भी अगर बदलाव किया है इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, तो हमें जरूर बताएं, हम आपके पास आएंगे और आपकी कहानी सबको सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल, तो आपके रेडियो साथी मनीष
0: और रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे हक है कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4। और हमारे साथ हैं हमारे रेडियो साथी
1: मनीष और साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मुझे हक है, क्योंकि मुझे हक कार्यक्रम जैसा ही नाम है वैसा ही इसका काम है, क्योंकि मुझे हक है, मुझे
0: समझ
1: हक
0: रहे
1: है
0: हैं,
1: जानने का,
0: मुझे
1: मुझे हक
0: हक
1: है
0: है
1: पहचानने
0: पहचानने
1: का,
0: का,
1: और
0: और मुझे
1: मुझे
0: हक
1: हक
0: है
1: है
0: जो मेरे लिए योजनाएं चल रही हैं
1: जी
0: उनका लाभ लेने का।
1: बिल्कुल वर्षा और सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम मुझे हक में बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और श्रोता साथियों को फिर से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारे साथियों के
0: जी
1: साथ, क्योंकि काफी दिनों से मुझे यह कार्यक्रम में हम योजना पर बात नहीं कर रहे थे, और हम आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा साथी, आप उनके मन में एक ही सवाल चलता है कि हमें साहब योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल। और देखिए होता क्या है, सरकार हम सबके लिए, हम बेरोजगार साथियों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती रहती है हमेशा समय समय पर, जिनका लाभ हमें मिल जाए और जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा कुटीर उद्योग ही टाइप कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हम अपना आय चला सकें।
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि हम और आप ये देखते हैं कि जब आजीविका की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो ये सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लग जाता है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे रोजगार हम करेंगे, और साथ में ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है हमारे साथियों के मन में चलती है कि क्या काश हमारा ये रोजगार हम जो लगा रहे हैं, जो हम व्यवसाय डालने जा रहे हैं, वो व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन इसके लिए एक उपाय है, हमारे पास उपाय है, क्योंकि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जा रहे हैं। यदि आपके पास रुचि है, यदि आपके पास हुनर है, आप ये देखते हैं कि हम किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं और अपनी हुनर बताते हैं कि साहब हमें ये काम बहुत अच्छा आता है, चाहे वो ऑटो पार्ट्स की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग रहते हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, उसके कारीगर आप स्वयं रहते हैं। लेकिन समस्या आती है कि हम अपना स्वयं का व्यवसाय नहीं डाल पाते, हम दूसरों के लिए काम करते हैं।
0: अरे अरे मनीष जी, अभी आप सारी बातें बता देंगे तो हमारे श्रोता साथियों को पता कैसे चलेगा कि आज इस मुझे हक है कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के लिए क्या लेकर आए हैं। तो पहले हम बता देना चाहते हैं कि आज श्रोताओं मुझे हक है कार्यक्रम में हमें जानने का हक है कि हम सुनेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी कि किस तरह से ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और कैसे हमारे बेरोजगार साथी जो हैं वो इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं।
1: लेकिन वर्षा, हमें लगता है कि एक गीत संगीत हो जाए
0: अरे
1: तो
0: मनीष जी, आप बस सुनते ही नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है।
1: जी
0: हम वही बताने वाले हैं कि हम जानकारी लेंगे, साथ में कुछ गीतों के साथ मनोरंजन भी करेंगे और कुछ हम और आप मिलके अपने श्रोताओं को कुछ और नई जानकारी भी देंगे ताकि हमारे साथी

0: योजना तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जो बात आप कर रहे थे कि यहाँ पर एक गीत सुनना है, बिल्कुल चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बढ़िया सा लोकगीत।
1: लड़का पारी बदाम मांग रहे सुन सुन के।

रेडियो अपनी बातें। रेडियो बुंदेलखंड पर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये मधुर सा गीत और जिसे गा रहे थे पन्ना लाल अहरवार और उनके साथी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम जो योजना के बारे में जानने वाले हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, उस योजना के बारे में जानते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा मनीष जी के पास।

0: इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं उद्योग विभाग के अधिकारी। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि उद्योग विभाग की ओर से कौन सी संचालित योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरीके से उसका लाभ लिया जाता है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिएगा।
1: जी, मेरा नाम हितेश ठाकड़ है और मैं उद्योग विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ टीकमगढ़ में।
0: तो सर उद्योग विभाग की तरफ से कौन सी योजना संचालित की जा रही है?
1: वर्तमान समय में शासन की 4 योजनाएं हैं जो उद्योग विभाग संचालित की जाती हैं। चारों के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। जी, इसके अंतर्गत आपको 18 से 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा आपको न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। जी, ठीक है। इसमें राशि की बात करें तो इसमें 50,000 से लेकर 10,00,000 तक की राशि आपको आपके व्यवसाय सेवा तथा उद्योग के पर्पज से आपको दी जाएगी। इसके अलावा हमारे आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः ऑनलाइन है। आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना है तथा इसका प्रिंट आउट हमारे जिला कार्यालय टीकमगढ़ में आपको जमा करेंगे।
0: इसको ये मध्य प्रदेश में का मूल निवासी,
1: जी इसके लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास 5वीं की मांग सूची होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त एक आवेदनकर्ता के पास अपने पास होने चाहिए।
0: अच्छा, उस फॉर्म में जब फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है कि कार्य योजना किस तरीके की आपको पूछा जाता
1: है? जी, इसमें क्या है, एक कार्य योजना का प्रारूप होता है, 2 पन्ने का ये प्रारूप है। वो आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि आवेदक द्वारा ये भरी जाए, लेकिन किंतु कई आवेदक इसे नहीं भर पाते हैं, इसलिए ये कार्य योजना हम अपने विभाग में अपने ऑफिस में भरते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कार्य योजना ना भर पाए तो आप हमारे विभाग में संपर्क करके पहले वो कार्य योजना बनवाएं, फिर ऑनलाइन उसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी आवेदन में, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका पता, और आप किस बैंक के लिए आवेदन कर रहे हो उसको आपको आवेदन में ऑनलाइन भरना पड़ेगा, जिससे जब आप आवेदन करोगे और जमा करोगे तो हम अपने विभाग से उसी बैंक के लिए स्वीकृत करके आपका आवेदन प्रेषित करेंगे।
0: अच्छा, ये सर उद्योग विभाग जब स्वीकृत भेजता है अपना डेटा तो कौन कौन से बैंकों को जाता है? कैसे?
1: जी, ये इसमें सभी प्रकार की राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है, वो भी शामिल है। लेकिन इसमें एक क्लॉज रहता है कि CGTMSE करके जो प्राइवेट बैंक इसमें कवर नहीं होती है, इसीलिए प्राइवेट बैंक आमतौर पर ये केस नहीं करती हैं। जबकि जो शासन की जो सभी समस्त बैंक है, ग्रामीण बैंक से लेके कैनरा बैंक, SBI बैंक, जो भी समस्त शासकीय बैंक है, वो सब इस योजना के अंतर्गत अपने अपने काम करती हैं।
0: अच्छा, तो ये चीज और बताइए, जैसे उसका आवेदन भर गया है, उसने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है, तो कितने दिन बाद उनको ये राशि प्रदान हो जाएगी, क्या उसकी प्रक्रिया क्या रहती है?
1: जी, जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूं, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है और जो भी योजना हमारे विभाग से चल रही है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत कवर है। इसके अंतर्गत अधिकतम 30 दिवस के अंदर हमें उस पर एक्शन लेना होता है और बैंक को प्रेषित करना होता है। अतः आप जब जिस दिनांक से आवेदन जमा करते हो उसके अगले 30 दिवस के अंदर हम आपके आवेदन पर निर्णय लेते हैं, इसे स्वीकार किया जाए या आगे भेजा जाए, तथा इसकी सूचना आपको मोबाइल से भी दी जाती है। और इसमें लगभग न्यूनतम 30 दिवस आप समझिए।
0: बहुत सारे सर हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग जब हम फील्ड पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर हमने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया था, उद्योग विभाग में जमा भी कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारी स्वीकृति नहीं आई है, तो क्या उसका कारण रहता है?
1: जी, कारण इसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं मिसमैच हो गया हो आपका फॉर्म हार्ड कॉपी, जैसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे आपको लगता है कि आपको बहुत दिन हो चुके हैं तो आप मोबाइल से या व्यक्तिगत संपर्क से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हो, आपकी समस्या जो भी उसका निवारण किया जाएगा।
0: जी, और इसके बाद जब बैंक के पास जाता है तो बैंक कितने दिन में उसको स्वीकृत कर देगी?
1: देखिए, बैंक के लिए एक डेडलाइन तो फिक्स नहीं है, लेकिन आमतौर पर बैंक अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के पश्चात ये कर देता है। अब कितना वो टाइम लेते हैं वो हर बैंक का अलग अलग रहता है, इसलिए इसकी जानकारी बैंक वाले ही बता पाएंगे।
0: अच्छा, इसमें ये रहता होगा कि आवेदक जो है यदि बैंक से वो कर्ज लिए हो तो क्या उसकी स्वीकृति हो जाएगी?
1: जी जी, बिल्कुल नहीं, आवेदक को बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसी बैंक का नहीं, किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपको लोन दिया जाएगा उससे पहले आपका एक नोटिस लगेगा कि आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, तो आवेदक अगर डिफॉल्टर है तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा, वो अपात्र हो जाता है।
0: और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर बैंक भी स्वीकृत कर देता है तो क्या डायरेक्टली उसके पैसा एक खाते में जाता है कि जो वो सामान खरीदना चाहता है उसके?
1: जी, इसके बारे में भी हमारे विभाग ने प्रावधान किया है, कुछ अनियमितताओं को लेकर इसका एक समाधान ढूंढा गया है कि जो आप कोटेशन लगाओगे, जैसे मान के चलिए आप जनरल स्टोर खोल रहे हो, उसके उसके लिए आपने सामान लाओगे कहीं ना कहीं से, तो वहाँ का आप कोटेशन लगाओगे, बिल लगाओगे, तो जब बैंक में वो बिल जमा करोगे आप, तब आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा। जब वितरण की बारी आएगी तो जो वितरण की राशि होगी वो सामने वाले के खाते में जाएगी जहाँ आपने कोटेशन लगाया है। आपको एक सेल लेटर मिलेगा जिससे आप उस सेल लेटर को वहाँ लेके जाइए और वो आपको सामान दे देंगे उतने मूल्य का।
0: अच्छा,
1: तो ये इसकी प्रक्रिया रहती है। आपको नगद राशि उतने सामान की नहीं मिलेगी।
0: अच्छा।
1: आपको जो अन्य खर्चे हैं जैसे काउंटर फर्नीचर या जो आपका सीसी लिमिट चलता है बैंक में, उसके लिए आपको नगद राशि मिलेगी, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा सामने वाले के अकाउंट में जाएगा।
0: अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी ने उद्योग विभाग से अपना लोन पास करवाया है और बैंक ने भी लोन पास कर दिया है, तो क्या उसको पूरी राशि जमा करनी पड़ेगी कि कुछ उद्योग विभाग उसमें छूट देगा?
1: जी जी, इसके लिए देखो शासन ने जो हमारे जो बेरोजगार युवा भाई हैं उनको प्रोत्साहन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें हर योजना में अलग अलग चार स्कीमें मैं उसका अलग अलग बताऊंगा। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात करें तो इसमें जो सामान्य पुरुष है उसको 15%, इसके अलावा वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, मान के लिए SC है, ST है, OBC है, विकलांग है, अल्पसंख्यक है और महिला है, इन सभी को 30% परियोजना लागत का 30% शासन की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी दी जाती है। आपको जो राशि आपकी है उसमें से 30% घटा के आपको बाकी रुपए बैंक को जमा करना है, जो 30% वो आपको प्रोत्साहन रूप आपके कार्य के लिए दी।

0: सर ये कितने दिन में उसको जमा करना पड़ता
1: है? देखिए ये तो ये बैंक का मैटर है, लेकिन इसमें फिर भी मैं बता देता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसमें अधिकतम 7 वर्ष रहता है और मिनिमम 6 माह रहता है। इस बीच की अवधि में बैंक आपकी किस्त बनाएगी आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको पूछ के, तो अधिकतम 7 वर्ष रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता, 7 वर्ष के अंदर आपको चुकाना है।
0: और यदि बैंक से वो लोन लेकर वो फेल हो जाता है अपने उद्योग लगाने के बाद, तो क्या उसकी क्या हो रहा है?
1: देखिए फेल होने पर पहली बात तो जो आप जिसके लिए उद्योग लगा रहे हो पर या जिसके लिए आप मुझे ऋण ले रहे हो वही उसकी गारंटी होता है पहली बात, तो अगर आप फेल होते तो वही जब्त होगा सबसे पहले। आपने दुकान लगाई तो उसका सामान, कोई भी चीज आप लगाई तो उसका सामान, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब आप फेल होते हो या डिफॉल्टर होते हो, इसके लिए भारत शासन की एक स्कीम है जिसे CGTMSE करके बोलते हैं, उसमें क्या है सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें रजिस्टर होती हैं। मान के चलो अनफॉर्चुनेटली कोई उद्यमी डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक अपना जो डिफॉल्ट किया हुआ पैसा है वो वहां से कवर करती है। ये ऐसा प्रावधान किया गया है।
0: अच्छा अच्छा जी। और यदि किस्त उसकी चूक जाती है तो क्या रहता है?
1: किस्त चूकने पर पेनल्टी लगती है उनका, कुछ परसेंटेज रहता है बैंक का, 0.2 या 0.5 जो परसेंटेज रहता है, इस हिसाब से पेनल्टी लगती है।
0: अच्छा अच्छा। तो इसमें उद्योग विभाग का कोई रोल नहीं रहता?
1: जी नहीं, उद्योग विभाग का रोल यहाँ तक सीमित है कि वो आप जब आवेदन करोगे आपके आवेदन को स्वीकृत करेगा, बैंक प्रेषित करेगा, अगर बैंक आपका लोन वितरित कर देता है तो आपकी जो एलिजिबल मार्जिन मनी है जो सब्सिडी जैसे बोलते हैं वो हम रिलीज कर देंगे।
0: अच्छा जी। इसमें कोई गारंटर रहता है?
1: जी गारंटर, देखो बेसिकली शासन की जो गाइडलाइन है उसमें गारंटर का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ बैंकों के हमारे संज्ञान में आया है कि उनके कुछ इंटरनल सर्कुलर हैं जिसके तहत उन्हें गारंटर की आवश्यकता होती है, तो ये हर बैंक का अलग अलग रहता है, तो ये वही अच्छे

0: अभी आपने जो जानकारी सुनी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जानकारी आप सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है?
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि ये जानकारी उन युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी है जो रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं। आप घर पे ही अपना स्वरोजगार लगा सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में, बहुत ही कम लागत में ऐसे ऐसे टिकाऊ रोजगार हैं, ऐसे ऐसे सस्ते रोजगार हैं जिसको हम घर बैठे कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सवाल आता है कि अब पैसे कहाँ से, तो ढाकड़ जी ने हमारे बता भी दिया है कि जो पैसे वो उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है, वो उद्योग विभाग स्वीकृत कर देता है आपके आपके परियोजना को और वो परियोजना बैंक में जाकर स्वीकृत हो जाती है और आपको एक आसान तरीके से ऋण उपलब्ध हो जाता है और आप अपने स्वयं का जो आपने सोच रखा है उस व्यवसाय को करने में आपको मदद मिलती है।
0: मनीष जी, यहाँ पर हमारे जो श्रोता साथी हैं थोड़ा सा नर्वस तब हो जाते हैं जब वो कहीं प्रयास करते हैं और वो प्रयास सफल नहीं होता है। तो अभी जैसा कि ढाकर जी ने बताया है कि कई बार क्या होता है कि फाइल यहाँ वहाँ हो जाती है और हम फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो जिस चीज को कहते हैं कि बार बार उस चीज के बारे में हम पूछते रहें। मान लीजिए अगर किसी को हमने पैसा दिया है या कोई चीज हमने दी है, तो हम उससे बार बार पूछते रहते ना कि भैया वो चीज ऐसी थी, वो कहाँ गई, या फिर हमने आपको वो पैसा दिया था वो अब कब लौट आ रहे हैं, क्या कैसा। तो उस चीज की स्थिति जानने के लिए हम उससे बार बार कांटेक्ट करते हैं, उसको फोन करते हैं या जाते हैं उसके पास। तो ऐसे ही जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं तो हमें उसका फॉलो अप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप गए, आपने इस योजना की जानकारी ली, इसका फॉर्म डाला और बैंक में या उद्योग विभाग में जाके आपने सबमिट किया और उसके बाद आके आप फ्री होके घर पे बैठ गए। अब आप सोचेंगे कि उद्योग विभाग वाले खुद आएंगे और वो हमसे पूछेंगे कि भैया आपने किसके लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं है, आप भी एक दो बार वहां पे जाइए और पूछिए उनसे कि साहब हमने जो फाइल दी थी उसका क्या हुआ, कब तक आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके एक तो क्या होगा कि उद्योग विभाग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे क्योंकि जान पहचान बढ़ेगी और जान पहचान बढ़ने से आसानी से लोग आपको पहचानने लगेंगे। तो आपको कहीं से भी कैसे भी करके किसी न किसी योजना से जोड़ दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाएगा।
1: एक हम अपने श्रोता साथियों को सलाह और देना चाहते हैं, जहां तक कि मेरा अनुभव कहता है कि हमारे श्रोता साथी अपने मन में जो आपकी इच्छा है कि हमें इस व्यवसाय को करना है, उसके लिए आप जो सरकार द्वारा, जैसे हमने स्वरोजगार योजना के बारे में

0: बताया है उसकी सबसे पहले वहां जाकर संबंधित अधिकारी के पास पहले जो गाइडलाइन रहती है उसको पढ़ लेना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारे साथी सोचते हैं कि सभी को लोन उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। उसके लिए भी कुछ कैटेगरी बनाई जाती है, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कितना पैसा, कितना छूट, ये सारी परियोजना में लिखा रहता है और उसी हिसाब से आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ऋण उपलब्ध हो जाए, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमें पढ़ लिख कर पूर्ण रूप से तैयार होकर तब हमें एक डिमांड करनी चाहिए, तब हमें मांग करनी चाहिए, तब हमें आसान तरीके से वो ऋण आपको उपलब्ध हो जाएगा और आसान तरीके से आप अपने व्यवसाय लगाने में आप सफल होंगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा है। इस बात पे हम भी थोड़ा सा और कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है जब हम बैंकों में जाते हैं तो बिना पढ़े ही हम किसी भी कागज पे दस्तखत कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ने में समय व्यस्त करेंगे तो वो हमारा समय बेकार जाएगा या हम कहीं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी हम ऐसी किसी योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ते हैं, तो उस योजना के बारे में आपको एक-एक जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है। आप उस योजना को अच्छी तरीके से पढ़िए कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका समय वहां पे बेकार जाने वाला है। तो इसलिए पहले से ही आप उसकी जानकारी ले लें ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। और जहां तक बात होती है पैसे की, तो मनीष जी देखिए, जब हम एक बार ठान लेते हैं कि हमें ये व्यवसाय या कुटीर उद्योग कुछ भी खोलना है, अपना स्वयं का व्यवसाय करना है, पैसा सिर्फ एक माध्यम होता है ना कि रुकावट बनता है, तो आप सारी जो तालमेल होती है, जो भी और व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उनको एक साथ रखिए। पहले पैसा एक बाद की चीज होता है, पैसे आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, किसी ना किसी योजना से आपको जोड़ ही दिया जाएगा, अगर आपके पास लगन अच्छी है, मेहनत अच्छी है, आप वाकई में चाहते हैं कि आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जो चीज, वो होती है प्लानिंग, मार्केटिंग और आपका लगन, आप कितनी लगन से उस काम को करने में लग रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और इसी के साथ, क्योंकि अब हमारे घड़ी और हमारा कार्यक्रम अब हमें इजाजत नहीं देता है कि आगे भी आप बने रहें, क्योंकि बहुत सारी बातचीत भी हो गई है और योजना के बारे में श्रोता साथियों को पता भी चल गया है, तो हमें आशा है कि अगले कार्यक्रम में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमें कॉल लगाकर पूछेंगे, जानकारी लेंगे या फिर अपने सुझाव जरूर देंगे कि हमने इस योजना के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाकर हमने फॉलोअप किया, हमने बातचीत की। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम सुनकर हमारे श्रोता साथी जरूर इस बात पर बिल्कुल अमल रहेंगे कि हमें इस योजना का लाभ लेना है।
1: बिल्कुल मनीष जी, और क्योंकि देखिए घड़ी की सुइयां भी अब हमसे कह रही हैं कि चलिए आपका समय हो गया है, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी हमारा आने ही वाला है। तो श्रोताओं, हम चलते हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनमें अगर आपको लगता है कि और बेहतरीन तरीके से कैसे इन्हें डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इन्हें आप सबके लिए ला सकते हैं, आप सबके लिए कैसे ये एक लाभदायक कार्यक्रम बना सकते हैं हम, उसके लिए आप हमें सुझाव जरूर दें। और सुझाव देने के लिए हमारा नंबर वही है।
0: 92 19 20 77 49।
1: तो अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करत हेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके में। जी हाँ सखियों, आप तो जानती हेंगी कि अम्मा के चौके में अपन और जो बातचीत को करत हेंगे वह बातचीत अपने किचन से जुड़ी भई तो होती हैगी, एक साथ में रेसिपी से जुड़ी भई होती हैगी कि

एक कोनो बढ़िया सी रेसिपी बनावो अपन और सीखत हैंगे ये कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सब में ध्यान देवे वाली बात जा होती कि अपन साफ सफाई के ऊपर भी विशेष तौर से ध्यान दे देंगे कि साफ सफाई का जरूरी है अपने लाने, उन चीजों को भी तना गौर अपन और करत हैंगे। और कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा थे को जब अपनी सखियां जुड़ के और अपने संगे अच्छी तरह से कार्यक्रम को सुनती हैंगी, साथ ही में फीडबैक भी कार्यक्रम के देती हैंगी। अपने संगे बहुत सारी ऐसी सखियां हैंगी, अब तो आपको बता देवे कि अपनी सखियां इतनी होशियार हो गई हैंगी कि ऑनलाइन के माध्यम से भी रेडियो बुंदेलखंड को सुनने लगी हैंगी। तो हम उन सब सखियन को बहुत ही शुक्रगुजार हैंगे और उनको धन्यवाद करत हैंगे कि वे अपने संगे जुड़ती हैंगी, साथ ही में अपन को फीडबैक भी देती हैंगी। ये कार्यक्रम में आगे आपको बता देवे कि जो भी हमारे श्रोता साथी कार्यक्रम को सुनत हैंगे या इको फीडबैक हम तक पहुँचा उठेंगे, तो आपसे भी एक अनुरोध हम करवो चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोनो अच्छी सी रेसिपी या फिर कोनो भी बढ़िया सी बात अपने मन में चल रही हैगी कि अरे जो चीज़ हम बहुत अच्छी तरह से बना लेते हैंगे और इको हमें रेडियो पे जरूर बताना चाहिए, तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक होकर फोन लगा सकती हैंगी। जी हाँ सखियों, और आज के कार्यक्रम में अपन मीनाक्षी राय जी की किचन में चलत हैंगे, उनकी रसोई घर में चलत हैंगे और देखत हैंगे साफ सफाई के माहौल को देखत भय भी अपन को का ऐसो बता रही हैंगी जी के बारे में। अपन उनसे जानवी के लाने गए हैंगे उनकी किचन में, तो आज हम चलत हैंगे मीनाक्षी राय जी की किचन झांसी में, तो आपको सुनवात है उन्हीं की मुख जुबानी से कि वे अपनी किचन में का बना रहे हैंगे और चलत हैंगे मीनाक्षी जी के पास।

0: सबसे पहले तो नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: नाम क्या है आपका?
1: मीनाक्षी राय।
0: अच्छा मीनाक्षी जी, आज हम आपकी किचन में आए हैं और जानना चाहते हैं कि आज आप क्या बना रही हैं।
1: मैं आज चने की दाल और सोयाबीन के कबाब बना रही हूँ।
0: अच्छा कबाब। वाह, कबाब सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है। इसकी थोड़ा सा आप कैसे बनाती हैं इसके बारे में हमें बताइए।
1: चने की दाल को आप एक कटोरी लेकर
0: जी।
1: और उसको रात भर सोख कर दीजिए,
0: भिगो के रखना है।
1: भिगो कर रखना है। और न्यूट्रिला अगर चाहे तो न्यूट्रिला की जो बड़ियां मिलती हैं
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: बड़ियों को आप रात में भी भिगा के रख सकते हैं। नहीं तो जब आप कुकर में डालो तो कुकर में चने की दाल 2-3 पानी धोने के बाद रात भर भीगी हुई दाल उसको डालकर उतना पानी डालेंगे जितनी दाल उसमें भीग जाए, ज्यादा
0: हाँ
1: पानी नहीं होगा। उसी में न्यूट्रिला वाले सोयाबीन की बड़ियां डालकर और उनमें सारे खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची और

0: और गरम मसाला, नमक, मिर्च और दालचीनी, जावित्री, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसको आप बॉयल कर लें, 4-5 सीटी लगा लें जब उसे बिल्कुल मिल जाए। उसके बाद उसको निकाल कर उसको मिक्सी में पीस लेंगे।
1: अच्छा, ये जो आपने इसमें गरम मसाला इस्तेमाल किया वो खड़ा गरम मसाला?
0: हाँ, खड़ा मसाला, थोड़े थोड़े गरम मसाले डाले जिससे उनका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है, उनकी जो खुशबू है वो ज्यादा अच्छी पता चलती,
1: ज्यादा अच्छी पता चलती। और फिर हमने उसको मिक्सी में डाल के,
0: मिक्सी में डाल के जब वो हमने बॉयल करा उसके बाद वो क्योंकि इतना पानी हम डालते हैं कि उसी में मिल जाए
1: जी,
0: ज्यादा पानी डालेंगे तो वो बहता हुआ हो जाएगा, वो नहीं होगा, बस उतना पानी हो जिसमें मिल जाए।
1: अच्छा, चने की दाल और जो बरी हमने ली थी सोयाबीन की, वो दोनों ही हमने
0: बॉयल करेंगे, 4-5 सीटी बॉयल करेंगे। उसको बॉयल करने के जब वो ठंडा हो जाए उसको मिक्सी में चला दीजिए और चलाने के बाद उसको निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा बेसन, 2 चम्मच बेसन डाल दीजिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालते हैं, थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और उसमें महीन महीन प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया, ये सब डालकर उसको मिला लेते हैं, बाइंड करेंगे। अगर देखेंगे हम बाइंड करने में अगर नहीं आ रहा है बाइंड करने में, तो हम ऐसे भी उन जो उसको रिफाइंड में कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे और रिफाइंड डालने के बाद उसको हम उसी में चलाएंगे काफी, तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। उसके बाद उसकी अगर हम वो बनाते हैं गोली गोल लोई बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से सेट हो जाते हैं और उनको फिर हम सेकते हैं और लहसुन धनिया मिर्ची चटनी के साथ बढ़िया सर्व करिए, ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करिए, बढ़िया।
1: अच्छा, इसमें आपने जो चटनी का इस्तेमाल किया, आपने कहा लहसुन धनिया की, तो वो आप कैसे बनाती हैं थोड़ा सा उसके बारे में?
0: धनिया लहसुन, अगर हरा धनिया, हरा लहसुन हो तो बहुत अच्छी चटनी बनती है हरा धनिया, और आजकल फूल वाला जो धनिया आ रहा है उसमें धनिया और लहसुन की एक आप एक ही बस वो डालेंगे, एक लहसुन का आप हरा वाला डाल दें तो उसमें, और हरी मिर्ची, जितना तीखा खाते हो तो ज्यादा मिर्ची डालिए और कम तीखा खाते हो तो कम मिर्ची डालिए, और उसको मिक्सी में, मगर बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, जगह जो थोड़ी सी दरबरी जो पिसती है ना तो उसका स्वाद ज्यादा अच्छा आता है।
1: अच्छा, क्योंकि वो उसमें ना जो हमारा सिलुड़िया वाली
0: थोड़ा फ्लेवर
1: आ जाता है
0: क्योंकि अब महिलाएं मोस्टली काइल होने लगी है, इसलिए तो चलती है मिक्सी, ऐसे सिलबट्टे पे अगर पीसी जाए तो उसका मजा और अच्छा,
1: बहुत ही अच्छा आता है। और खासतौर से हमने देखा है कि जब हम खेत पे जाते हैं और वहाँ पे ना तो हमारे पास क्या कहते हैं मिक्सी होती है ना कुछ होती है, एक सिंपल सा पत्थर भी अगर रखा है और उस पे पीस के भी खाते हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, वो एक अलग ही चीज होती है। इसको बनाते समय जब आप कबाब बनाते हैं तो क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए?
0: बस पानी जो हमने करा है वो कुकर में जो पानी रख रहे हैं उसको हम इतना रखेंगे, ज्यादा पानी नहीं रखें, जनरली क्या है लोगों ने डाला एक उठाया और 2 कप ग्लास डाल दिया, नहीं, उसको जितनी चने की दाल है उतने ही अगर पानी डालेंगे तो उसी में हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर पानी सुखाने में मुझे बहुत समय,
1: अच्छा
0: इसलिए
1: ये सावधान,
0: हाँ ये सावधान। और बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा बेसन और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिलाकर हम उसको बाइंड करके उसकी टिक्कियां बना लेते हैं, तब बनेगा अच्छे से, नहीं तो बाइंड होने में दिक्कत हो।
1: बिल्कुल। अच्छा मैम, थोड़ा सा और किचन की साफ सफाई की अगर जहाँ तक बात करें तो उसमें कैसे क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है?
0: किचन की साफ सफाई हर खाने बनाने के बाद साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है कि कीड़े हो जाना या बहुत चींटियां हो जाना, ये सब एक आम बात है, तो क्या है विम का अगर वो है या गर्म पानी से, अब सर्दियों में हो कि हम लोग घी का काम बहुत करते हैं तो क्या है गर्म पानी से अगर किचन साफ करें गर्म स्लैब उसकी तो ज्यादा अच्छा साफ हो, और जो विम बार का लिक्विड वगैरह डाल के विम का लिक्विड वगैरह डाल के तब साफ करेंगे स्लैब तो ज्यादा अच्छा साफ हो।
1: अच्छा, एक चीज और इसमें याद आती है जो उन महिलाओं के लिए है खासतौर से जो भूल जाती हैं कि रात को सिलेंडर से गैस नहीं बंद करती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: रात को गैस सिलेंडर बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जरा सी सावधानी दुर्घटना घटी वो स्थिति होती है, इसलिए रात में हमें अपना काम सारा खत्म करने के बाद गैस वगैरह साफ वाफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गैस रेगुलर रूटीन में नहीं साफ करते हैं तो गैस से लीकेज की प्रॉब्लम होती है और बर्नर जब खराब होते हैं तो गैस ज्यादा भी निकलती है उसमें वो होती है, इसलिए आप रात में काम करिए और बंद कर दीजिए, ये एक बहुत बड़ी सावधानी
1: जी। हम जो किचन साफ करने के लिए या फिर यूं कहिए कि किचन के बर्तन जो हैं वो साफ करने के लिए जो एक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उस कपड़े को हम कितनी बार धोना सही रहता है हमें? क्योंकि हम इस्तेमाल तो उसका सफाई के लिए करते हैं लेकिन जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वही गंदा होता है।
0: हाँ, ये होता है जनरली
1: होता है,
0: हाँ, ये होता है। और ये अच्छी बात है कि काम हो जाने के बाद उसको गर्म पानी से धोकर और अच्छे से साबुन से रगड़कर और उसका गंदगी निकालकर धोकर और निचोड़कर डाल दें जबकि अगले टाइम के लिए वो तैयार हो जाए, पता चला वो गंदा है, और अगर वही गंदा है तो फिर दोबारा सफाई करिए वो फिर वैसी गंदी।
1: बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब हम

0: करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं खासतौर से, वो जिद करते हैं कि मम्मी हम भी साथ में रहेंगे ये वो, तो क्या उनको किचन में रखना सही रहता है उस टाइम पे?
1: नहीं, छोटे बच्चों को किचन में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि हम किचन में कोई काम कर रहे हों और हम ही मुड़ते हैं और कोई चीज झटके से गिर गई तो बच्चे जल जाएगा बच्चा, या कुछ ऐसा हो कि हाथ पैर में लग जाए, इसलिए बच्चों को बिल्कुल किचन में दूर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे कबाब हमें बनाने बताए, साथ में किचन की से जुड़ी हुई भी बातचीत बताई है हमें कि साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए, सिलेंडर को हमेशा काम खत्म होने के बाद बंद कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ और संदेश अगर आप हमारी जो महिलाएं हैं, क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा सुन रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: हम तो यही कहेंगे कि आजकल जो सब सफाई से रहें, और जो वैसे तो मैंने देखा है गांव में जब लीपा पोती जो होती है वो बहुत अच्छा
0: हाँ,
1: लगता है जब
0: बहुत
1: काम,
0: अच्छा।
1: वो वैसे भी वो करके और सफाई सुथरा से जब काम होता है किचन, वो जो चौका लगा हुआ होता है वो देखना बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा, और वो लीपा पोता हुआ है, चौक पूरी हुई है, वो जो है वो, इसलिए गाँव की महिलाओं से मेरा विशेष अनुरोध है। और आजकल जो चल रहा है कि जय अपनी सफाई पर, व्यक्तिगत सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: अपने आसपास को साफ रख रहे हैं मगर अपने आप को भी खुद साफ रखना भी जरूरी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

कहने लगी, अगर मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र कपड़े नहीं होते तब भी मैं फटे पहनकर अपना लेती। और कहा, अपना लेती कठिन, अपना लेती कठिन, कंटकों की गली बिलखे ले ही मौत के।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी

आपनो रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे हमारे सभी श्रोता साथी सभी सखियां सुन रही हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके से। और अब अपन ने सखियों जानो है गो कबाब बनाबे की विधि की प्रकार की होत हैगी, और अपन जो बातचीत कर रहे थे भी मीनाक्षी जी अपने संगे हती। सो साथियों हम जानत हैंगे कि हमारी जो बहने हैंगी ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी क्षेत्र की हो, सबके अंदर कोनो ना कोनो टैलेंट कूट कूट के भरो रहते है गो, है ना, कूट कूट के मतलब बहुत सारो टैलेंट रहते है गो, लेकिन काहे कि उन्हें इतना हिचक रहते हैगी कि भैया हम कैसे बताएं सबके सामने कि कैसे का बना थे गो। तो आपको ज्यादा सोच भी की जरूरत ही में नहीं है, काहे कि आप बलिया हमें फोन लगाओ और हम आपको बताएं बड़े आसान आसान तरीका से कि कैसे आप हमें अपनी विधि बता सकती हैगी। जो अपना नंबर है वो जी पे हमारी सखियां फोन कर सकती हैंगी, व्हाट्सएप कर सकती हैंगी, और साथ ही में अगर आपको हिचक कोनो हो रही हैगी बात करीबी में तो एक वॉइस मैसेज जो होते है वो आप हमें भेज सकती हैंगी। तो फिर का हुई है कि हम आपको इतने से फोन लगा के और आपसे बातचीत कर लेंगे कि अम्मा के चौके में आप कहा बतावो चाह रही हैं। देखो सबके पास अलग अलग आइडिया होते हैं, जैसे मीनाक्षी जी ने अपन को किचन की साफ सफाई को लेके कछु बातें बताई हैंगी, सो ऐसी ही बातें हमारी और भी बहनन के पास जरूर हुई है। तो बहनों देखो कथ हैंगी ना कि अगर तालाब में पानी भरो रहे और वो पानी निकल ना पावे के तो वो बदबू देर लगत है, गंदो हो जाते है वो, लेकिन वो पानी अगर बहत रहे एक दूसरे से मिलत रहे आगे बढ़त रहे तो वो अच्छो रहते है शुद्ध रहते है वो। तो कहबे को मतलब है कि ज्ञान किते को बांटो अपन कम नहीं होते। आपके पास कोनो टैलेंट अगर है वो खाना बनावे को बेहतरीन तरीका आपके पास है, अगर कोनो रेसिपी आपको बहुत अच्छी आत हैगी, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो अपने बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सारी पहले जो खाना बनाए जाऊते आज भी कितों कितों खत्म हो चले जा रहे हैंगे। तो अगर आपके मन में ऐसी कोनो विधि खटखटा रही हूँ तो आप हमें भी फोन के माध्यम से खटखटा सकती हैंगी और बता सकती हैंगी कि देखो और हमने जा विधि जानी हैगी और ये विधि से जो है हम अपने सब सखियन को बतावो चाहू थेंगे। तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकती हैं। फिलहाल आपको बता देवे कि अभी कार्यक्रम अम्मा के चौके से जावे को हमारा समय हो रहा है गो, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की अनुमति हमारी और आपकी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने खुश रहें, मुस्कुरात रहें और सावधानी पूर्वक अपनों और अपने परिवार को ध्यान भी आपको रखने है गो। तो हम चलत हैंगे, नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, चूँकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है उस पर भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती भी हुई

0: अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है,
1: पत्तो आने से पहले ही ढल जाती मैं।
0: अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

0: आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा,
1: रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर।
0: मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाए। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन से ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपनी खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी

0: सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से 2 गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70 से 80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाज़ार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। आप किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, चूंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला देखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है लंबाई वो 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो हम खेतों में अपना यहाँ जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी। और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
1: जी
0: विधि
1: सर,
0: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज़्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज़्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60 बाई 60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60 बाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए?
1: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई हैं ना उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम है MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूप में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूप में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
1: जी सर बिल्कुल। अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा, अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पर या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पर हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
0: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
1: बिल्कुल
0: को?
1: सर, अभी क्या है, जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज़्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही है, जिसको हम पीथियम एपेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है। तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पर कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC, जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनकोजेब या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
0: बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी, और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
0: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाए भी हैं, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
1: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी। ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूँकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
0: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
1: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है, वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र विहार का पता है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगला के पास ओरछा।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जनने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों एक तरफ में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। बा विधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सो देखो लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन को आनंद लेते हैं। सो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

उन्होंने मड़के नौ दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

सूरो सुनो डरो लिलार के बेंदा ले दे लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत, अपन सब जन ने सुनो है ये गीत को, आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरदयाल वर्मा जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम खुआंगे बढ़ाऊ थे और सुनत है अगले साथियों की गाय भाई लांगुरिया को। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, देखी शिव की अजब बारात गांव की, भग गए लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ई लांगुरिया को, आनंद लव है ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया चतुर्भुज जी। सो दोस्तों, अब चतुर्भुज भैया जी की लांगुरिया के बाद आओ सुनते हैं अगले साथी की गाई भाई लांगुरिया को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में।

मैया के दरबार छमा छम नाचे लांगुरिया नाचे लांगुरिया छमा।

0: छमा छमना चेला गुरिया मोदी मैया के दरबार छमा छमना चेला गुरिया।
1: बिल्कुल दोस्तों, मोरी मैया के दरबार छमा छम नाचे लांगुरिया। अब दोस्तों इनके गीत के बाद फिर से अपन सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भई लांगुरिया।

अपनी चुनरी भईरे भदरंग लांगुरिया लादे चुनरिया जयपुर की। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। आप दोस्तों ये लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया रामकृष्ण कुशवाहा जी। सो दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो गया है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: उतार दियो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारे के हम आई सुनो
1: गगरी तोरी भौजी चबई उतर है गगरी तोरी भौजी चबई

कहे जा राज दुलारी। अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को है।

मुंह दिखा जिकेरे लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भइए ऐसे तो कह रहे के गगरी उतार दिखाए।

0: कमाओ के वो है, तुम कह रही के तू बेने है, हमें नेग में जो नहीं जाने मालूम का चाने
1: क्या
0: वो है। प्राणन से प्यारी भो जाई, ध्यान से सुनियो बात हमारी, ध्यान से सुनियो बात हमारी, कादे हो गगरी।

0: बिटिया
1: हमेशा खुश रहे और दोनों कुलन की शान बढ़ावे जो ही हमें तुमसे नेग में जाने और कछुरे जाने
0: और अरे खुशी रहे जा राज दुलारो कुल को है उजियारो अरे खुशी रहे जो राज दुलारो कुल को है उजियारो
2: उतार दैया सगरी ला।

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: कार्यक्रम शुभ कल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभ कल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था

0: कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं। वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी, साथ साथ में हमने इस समुदाय से बात की थी और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
0: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरू भौजी ही काफी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरू भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी, अब तो ना आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: क्या कह रहे ने, कठिया के बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भाजी, तनक हमने कही के आज आराम से बतिया लिए, भाजी से बेसी तो लड़त रहते अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके भी आई थी, तुम ये संगे चलो।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसो काहे थे हारे के हम हारे चले थे?
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लो, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ लीजिए, आखने मुझे जरूरी काम है, वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता ही बता दे तो।
0: का कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहे भौजी, ऐसी क्या बात है, इतनी बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है?
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, नेक मुझे का को तो अच्छी सी बता दू, नेक में का डाल लूं ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जे दवाई ले आऊंगी, लेकिन इनसे का को मुझे कछु फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है गो, और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई याद हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारा नाम क्या भी।
0: अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आऊंगा?
1: अरे आओ तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थी, ठीक बात है।
0: अच्छा हुँ? तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखे, तुम्हारी कैसी है?
1: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी,
0: ये दवाई देते ही।
1: चलो देखे यहाँ तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारे खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: तो देख भौजी, देख जा अभी भी आसो की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ भी जाने तो खेती करनी है, तो जिनमें देखो जी आजकल की दवाई चल रही है अपनी, रासायनिक दवाई जे ही देती, मैं तो जो दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लाला जी, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने आओ तई, पढ़ भी जाने तो खेती भी करनी है संगे संगे, देखो अब किसानी को गाँव गाड़ो को काम है तो सब करनी है।
0: वो तो
1: यही
0: है लालाजू, मैं जा के रही, तुम कहाँ डाला दिन में, देखो तुझे भटन में कैसा कीरा मीरा सो लग रहा है वो, और आने से लग रहा है, कहाँ डाला तुम इन्हें?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुलकन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू, मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही की तुम आई अच्छी हो, जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जाई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तो ऐसी बातें कर रही, कौन मेरे घर है बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया था, तुम जाने का करा था जुम्मून, मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी, तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लाला जी, तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी, मैं तो जबकि देसी दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो बड़े वास आई थी, अरे मेरे लाला जी की अच्छी उम्दा होती है, काहे के भी पढ़े लिखे है, अच्छी दवाई ले आ तुमने।
1: अरे भौजी, अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काहे को दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंगन में, दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंचित
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी छत
1: तो लिया
0: ले, इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फट कर ही रंग चोखो हो जाए।
1: बहुत जितने तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ, मामे कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर है बनाऊ तो, और अपनी बैगन में और चाहे जो सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत
1: हूँ। कैसी काय को मस्करी कर रही हो जी।

0: राजू, काय को मस्करी कर रही
1: और
0: मस्करी दिखा रही।
1: और क्या ही तेरे के घर बना दवाई बना वो हंसी के लेता।
0: हाँ लालाजू, मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते रासायनिक दवाई, जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ।
1: अब तो वो जी चला ही नहीं आती यार, देखो
2: कैसी चल। देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: ना ये कहो कीड़ा लगो, कीड़ा के लाने वो जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषज्ञ बुला लेते हैं, तो उनसे पूछ।

0: भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी ला खेगी।
1: क्या कह रहे भौजी, तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है।
0: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
1: हाँ तो लाला जी, मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जाए, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी। मैं तो घरे बना था अपने हिसाब।
0: लेकिन भौजी जी टपक जाए बे मटका धरे जे खाएगी बस धरे चार पाँच।
1: क्या कह रहे लाला जी, टपज्जा में लोटा धरे।
0: लोटा नहीं बे मटका धरे बट तुटे टपज्जा में।
1: हाओ लाला जी, मैं मटकन से मैं मटका खाद बनाता हूँ।
0: मटका खाद?
1: हाओ
0: वह कैसे ही बनाता?
1: ले ओ लाला जी, तुम्हें जो ही पता नहीं है, मैं अपनी सब देसी खाद डाल रहा हूँ उनमें, जिससे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
0: हाँ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
2: अच्छा,
0: लेकिन तो मैंने जसूची नहीं है कि खुद बना सका।
1: अरे वो तो है ही, बना सकते। तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हें को इस्तेमाल करने।
0: अब तो भौजी मैं तू जरूर सीख भी आऊँ जी दवाई बना।
1: बिल्कुल, तो आज जो ट्रेनिंग ले अभी खिलाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरव भौजी ने कितने अच्छी तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छी तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरव भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
4: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
4: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है, उसमें अपन को फायदा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको तोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी थी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
4: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
4: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
5: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
5: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गया, उड़द हो गया, चना हो, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: जी जैविक खेती के उत्पादन।
5: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं।

0: आपके हिसाब से क्या लगता है?
1: अपने हिसाब से यह है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं, अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
0: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं।
1: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआं अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊ होगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
0: चलिए, बहुत
1: क्या
0: अच्छा लगा
1: बता
0: लाला
1: सकते
0: राम
1: हैं?
0: जी
1: हमारा
0: आपसे बात करके, धन्यवाद।
1: नाम है रईस यादव, लिधौरा नेवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
0: अच्छा रही जी, हम जानना चाह रहे हैं
1: हाँ,
0: कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
1: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो जो भाटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, और इसमें निर्दोखल रहता है, मतलब गोबर खाद,
0: अच्छा
1: जिससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
1: धीरे धीरे होगा। वो तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, मतलब गोबर जो मान है गौ माता का, ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है। फिर
0: अच्छा, जैविक
1: वो भी
0: खेती खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
1: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है वाला है,
0: आय बढ़ती है, कैसे
1: आय
0: बढ़ती
1: बढ़ती
0: है?
1: है उससे, मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते रहो अपन,
0: अच्छा
1: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल, बढ़िया तुराई चलेगी उसकी।
0: धन्यवाद भाई साहब।
1: ब्रज किशोर कुशवाहा।
0: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
1: हमें पता नहीं है सर,
0: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
1: नहीं है जानकारी सर,
0: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग।
1: अब जी हमें पता नहीं है सर।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष
2: लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
4: जीवा

माला माल कर देती जा जैविक खेती, माला माल कर देती जा जैविक खेती।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
0: आपका सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती, अगर इस क्षेत्र में देखा जाए सर, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विषय विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थायी कृषि है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें।
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर, जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं, और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातुएं हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है, तो इसमें पता नहीं चलता है लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। सकते हैं, जो इसमें आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
0: जी, अगर सर अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है, क्योंकि अभी हमें रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
3: जी, इसके अनेक लाभ हैं और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी
0: जी,
3: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा
0: जी,
3: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो
2: होगी और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब अब टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
0: जी सर,
2: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है सर हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हां, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
4: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हां श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207749। श्रोताओं आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। साथियों अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा

0: पीना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था। और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: शुभ कर्म बदलती जलवायु के लिए।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को अजीत का अभिवादन
3: और विमलेश का नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लगातार कार्यक्रम को सुनने के लिए। और आज हम कार्यक्रम का प्रारूप थोड़ा सा बदलेंगे
3: जी।
1: अक्सर हम शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, लेकिन आज आरंभ करना चाहते हैं एक लघु कथा से, जो कि आप कहते हैं कि हमें लघु कथा बहुत पसंद आती है। तो आइए सुनते हैं आज की लघु कथा।
3: एक बार एक नौजवान शिष्य महान दार्शनिक सुकरात के पास आया और उनसे पूछा,
1: गुरुवर, सफलता का रहस्य क्या है?
3: सुकरात ने उससे कहा,
1: मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगा, कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलो।
3: जी, दूसरे दिन वो युवक सुकरात से नदी के किनारे मिला।
1: सुकरात उसे लेकर नदी में आगे बढ़ने लगे।
3: वे दोनों नदी में तब तक आगे बढ़ते रहे
1: जब तक नदी का पानी उनके गले तक ना आ गया।
3: और नदी के बीच में पहुंचकर अचानक ही सुकरात ने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया।
1: पानी के भीतर सांस लेने में अक्षम होने के कारण, श्रोताओं, वो युवक पानी से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से संघर्ष करता रहा,
3: लेकिन सुकरात की मजबूत पकड़ के सामने उसका ये संघर्ष विफल रहा।
1: मरता क्या ना करता, श्रोताओं, उस युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी प्रकार पानी से बाहर आ जाए।
3: पानी से बाहर निकलते ही वो युवक हांफते हुए तेजी से सांस लेने लगा।
1: उसे ऐसा करते देखकर सुकरात ने पूछा,
3: ये बताओ, जब तुम पानी के भीतर थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहते थे?
1: उस लड़के ने कहा, मैं चाहता था सांस लेना।
3: सुकरात ने कहा,
1: यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना सांस लेना, तो वो तुम्हें मिल जाएगी।
3: इसके अतिरिक्त सफलता का कोई और रहस्य नहीं है।
1: तो श्रोताओं, आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है
3: जी।
1: तो याद रखिए कि सफलता प्राप्त करने का रहस्य है
3: उसकी पूरी शिद्दत से चाह करना और वैसा परिश्रम भी करना।
1: जी हाँ, और वैसा परिश्रम भी करना
3: जी।
1: आपको बता दें श्रोताओं कि पिछले दिनों में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, और प्रश्न था कि इन दिनों ओलंपिक खेलों में विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं
3: जी। प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को क्या दिया जाता था?
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग किसी का भी उत्तर सही नहीं था। इसका उत्तर है, प्राचीन यूनान में प्रथम आने वाले को जैतून के पत्तों का मुकुट,
3: दूसरे स्थान पर आने वाले को जैतून के पत्तों की माला,
1: और तीसरे स्थान पर आने वाले को जैतून का फल दिया जाता था। आइए श्रोता मित्रों, अब चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि हमने कल भी किया था, आपको कार्यक्रम सुनने से पहले हल करनी होगी
3: एक पहेली,
1: और वह भी 30 सेकंड से
3: एक मिनट के अंदर,
1: क्योंकि आज का कार्यक्रम भी इसी पहेली पर आधारित है।
3: पहेली है,
1: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में

0: किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
1: आपके लिए क्लू है,
0: बिहार,
1: शाहबाद।
0: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए ये लघु गीत।
0: जी हाँ, ये लघु गीत सुनिए। और जब ये लघु गीत बज रहा है तो जल्दी से हमें फोन मिलाकर आज के प्रश्न का उत्तर दीजिए।
1: उत्तर देने के लिए हमारा IVRS नंबर है
0: 8800044055 9।

0: आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपको कार्यक्रम का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि कार्यक्रम सुनते सुनते आपको आज के प्रश्न का उत्तर देना है।
2: भारत माता की। हम किसानन का महाजनन से बदला लेकर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली। हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जला डालो।
3: अठारह भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे। उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
4: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ता।

0: पुराना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
1: सुना तुमने? क्या पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है? अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
2: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
1: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
2: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
4: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह। अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करें?
5: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गईल बा, कभो कुछ हो सकेला। हा
1: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्या आदेश है?
5: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
2: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
5: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी हुजूर,
5: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
1: जी हुजूर।
5: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
0: July 26, 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
5: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है।

0: किशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है, शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
1: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हर किशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
2: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हर किशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
0: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण

0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
2: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
1: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
3: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना

0: कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं।
1: आपकी मुराद पूरी करे।
0: हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
1: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है, अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
2: कुंवर सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
3: ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
1: ओह माय गॉड, देखो शाहबाद खबर करो कि कांवर सिंह नदी पार कर गया है।
2: यस सर।
0: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोकगीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह।
1: ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का दूसरा कार्यक्रम,
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैंने सिखा था पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल खेले नहीं आ रहे।
2: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छेती अठारह,
3: छेती अठारह।
5: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
6: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
6: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूँ, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
6: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
6: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
5: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मन। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है पर पहाड़ा।
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती।

0: तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
1: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
0: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
1: पक्का?
0: पक्का।
1: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
0: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
1: हाँ सच? तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
0: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
2: कमाल है भाई, ठीक ही है। दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
3: खत्म हुआ झगड़ा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आशा है कि आज का प्रसारण आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
4: इसी प्रकार सुनते रहें उमंग,
3: और मन में आने दीजिए नई तरंग,
4: और अपने मित्रों में बांटते रहें
3: नए मन की तरंग के साथ मन की उमंग।
4: अब अजीत और विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।

0: सभी का स्वागत है हेल्थ ऑन एयर के पॉडकास्ट पर। हमारे साथ आज एक विशेष अतिथि हैं, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर लहरिया एक चिकित्सक, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और लेखक हैं, जिनके पास विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और अन्य प्रमुख संगठनों में 15 साल से भी अधिक का अनुभव है। डॉक्टर लहरिया ने टीकाकरण की पहुंच को बढ़ाने में भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। यही नहीं, बल्कि वह प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों को ड्राफ्ट करने में एक प्रेरक शक्ति रहे हैं। इनकी विशेषज्ञता है नियमित टीकाकरण, नवजात और मातृ स्वास्थ्य, प्राथमिक देखभाल और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। डॉक्टर लहरिया वास्तव में तो हर स्तर पर स्वास्थ्य मुद्दों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रारंभिक स्तर पर क्लिनिक को डिजाइन करना हो या फिर अंतरराष्ट्रीय नीतियों को आकार देने का काम करना हो। इनके व्यापक प्रकाशन, मीडिया में उपस्थिति और बेस्ट सेलिंग पुस्तक टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक प्रमुख आवाज बनाती है। वह हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि एक सफल टीकाकरण कार्यक्रम के पीछे क्या स्ट्रैटेजी होती है, हम कैसे हमारे समुदाय के बीच अपनी पहुंच को बेहतर कर सकते हैं और टीकाकरण के बारे में कुछ सामान्य गलत फहमियों को दूर कैसे कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं डॉक्टर लहरिया के साथ यह वार्तालाप, जो कि हेल्थ ऑन एयर के एसोसिएट संपादक सोमी दास द्वारा किया जा रहा है।
1: डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ ऑन एयर पॉडकास्ट पे। मेरा पहला सवाल, भारत में टीकाकरण कवरेज में सुधार के प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियां हैं। सामुदायिक स्तर पर मुख्य बाधाएं क्या है जो हमें सभी के लिए पूर्ण टीकाकरण में सफलता प्राप्त करने से रोकती है?
2: इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वर्ष 1978 में शुरू हुआ था, जब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से इसको शुरू किया गया था। तो तब कुछ कम वैक्सीन होती थी और साथ में फोकस था कि शहरी बच्चों को टीकाकरण होगा। फिर जब 1985 में इसको एक नया नाम दिया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो उसका तात्पर्य यह था कि अब यह शहरी से लेके ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह यूनिवर्सल हो इम्यूनाइजेशन होगा। लेकिन उसके बाद के 30 सालों में भी इम्यूनाइजेशन कवरेज काफी कम रहा, खासतौर से 2005 तक सिर्फ आधे बच्चे जो हर साल पैदा होते हैं उनको ही सारी रिकमेंडेड वैक्सीन मिल पाई थी। तो उसकी कई वजह थी, एक तो वैक्सीन की सप्लाई बड़ा चैलेंज होता,

0: दूसरा, क्योंकि हमारा देश बड़ा है, करीब 6.5 लाख गांव पूरे देश में है, तो हर गांव तक, हर नए बच्चे तक समय पर टीकाकरण पहुंचाना बड़ा अपने आप में एक चुनौती है। तो एक बात आती है कि जो टीकाकरण की प्रक्रिया होती है वो सप्लाई और डिमांड दोनों पर निर्भर करती है। अब इसको समझते हैं। सप्लाई का मतलब हुआ कि टीकाकरण को हर बच्चे और हर गांव देहात तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि वहां पर टीकाकरण की सर्विसेज पहुंचे, अर्थात जो सरकारी सिस्टम है, जो टीके लगाता है, जो ANM होती है, वैक्सीनेशन करती है, वैक्सीन लेके वो उन लोगों तक पहुंचे, तो सप्लाई वहां तक हो। दूसरा, अगर कोई ANM या जो टीकाकरण के वैक्सीनेटर्स होते हैं उस गांव या कस्बे में पहुंच भी जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली इम्यूनाइजेशन कवरेज हाई होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह वॉलंटरी है, तो लोगों का आना भी जरूरी है, डिमांड भी होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों को या कोई व्यक्ति कहे कि मुझे अपने बच्चों को टीके लगवाने हैं और समय रहते लगवाने हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड का चैलेंज है। उसके अलावा यह भी देखा गया है, और जिसको आजकल काफी जोर शोर से जिस पर बात हो रही है, इसको कहते हैं जीरो डोज चिल्ड्रन, अर्थात अभी भी हमारे देश में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टीकों की पहली इवन ए सिंगल शॉट भी नहीं लगा होता है। अब ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पूरी तरह टीकाकरण करने के लिए 6 कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे को एक बार भी टीकाकरण नहीं लगा है, तो हमें उसे गहराई में समझने की जरूरत है। तो हालांकि पिछले 20 सालों में देश में टीकाकरण के कवरेज में और जो वैक्सीन की संख्या है उनमें इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी जो टीकों का कवरेज है हमारे पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश या श्रीलंका या थाईलैंड है, उनसे कम है। उन देशों में हर साल 95% से अधिक बच्चे लगभग सारे रिकमेंडेड वैक्सीन मिलते हैं। अभी भी हमारे देश में वो 80% करीब रहा हुआ है, और राज्यों में इनइक्विटी है, अर्थात केरल में, अगर केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक में अधिक प्रोपोर्शनेट बच्चों को टीके में लगते हैं, लेकिन वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी भी काफी सारे बच्चे छूट जाते हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड साइड दोनों की चुनौतियां हैं।
1: टीकाकरण की मांग में कमी क्यों है? क्या ये किसी विशेष समुदाय या जनसंख्या में समस्या ज्यादा दिखती है?
0: सबसे पहली बात हमें याद रखनी होगी कि हमारे जैसे विशाल देश में, जहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है, इतने सारे गांव, देहात, शहर, कस्बे, जिले हैं, वहां पर सभी जगह सेम कारण नहीं होता, तो कुछ तो हमें उस पर, और हर राज्य को, खासतौर से राज्यों को इस पर देखना होगा कि उनके राज्य में कौन सी पॉपुलेशन है जो छूट रही है, और उस पॉपुलेशन में कारण क्या है। अब बात करते हैं, जैसे कि माइग्रेंट पॉपुलेशन एक बड़ी चुनौती है, कि जब लोग काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले, बल्कि विद इन डिस्ट्रिक्ट में, एक गांव से शहर आ जाते हैं, तो शहर में वो उनका लिस्टिंग नहीं होता है, तो उनको नहीं पता होता, जो लोग आते हैं वो उनको कहाँ टीकाकरण होता है ये पता नहीं होता है, और जो सप्लाई सिस्टम है या जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको पता नहीं होता कि कहाँ पर बच्चे आए, तो उस तरह से छूट जाते हैं। तो माइग्रेंट पॉपुलेशन की एक चुनौती है। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे कि कुछ राज्य हैं जिनके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कि वहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेशन होता है, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, बच्चों को साथ में लेके आते हैं, तो उनके पास टीकाकरण का रिकॉर्ड नहीं होता, तो जहाँ पर नई जगह पर अगर वैक्सीनेशन करना भी चाहें तो माता पिता को पता नहीं होता है कि कौन सा टीका लगाए, और टीकाकरण का रिकॉर्ड होता नहीं है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है उनके पास होता नहीं है, तो वो सिस्टम भी नहीं समझ पाता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, तो एक माइग्रेंट का है। दूसरा, कई सारी सब कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पर वैक्सीन के प्रति हिचके चाट होती है, हेजिटेंसी होती है, कि उनको लगता है वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बीमारियां कम हो गई हैं, टीकों की वजह से बीमारियों का असर कम हो गया, तो उन्हें लगता है कि बीमारी इतनी है ही नहीं, तो इसके टीके क्यों लगाए जा रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि टीके लोगों को लगाए गए, अधिकतर लोग टीके लगवा रहे हैं। फिर बात करते हैं जैसे कि रिमोट हिली एरिया हो गया, ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई, तो उन पर उनमें समय रहते टीकाकरण नहीं हो पाता है और टीकाकरण सर्विसेज भी नहीं पहुंचती हैं, तो ये सारी चुनौतियां हैं। फिर बात आती है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो लेस देन सफिशिएंट फंक्शनिंग है, कि उसकी फंक्शनिंग इतनी अधिक नहीं होती, तो कहने को ऑन पेपर टीकाकरण हो रहा होता है लेकिन वास्तविकता में वहां तक लोग नहीं पहुंच रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को याद रखते, हर परिस्थिति में अलग अलग कारण होते हैं, और हमें उन कारणों को याद रखते हुए उस पर लोकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है।
1: इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगले 5-10 साल में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए, वरना एक पब्लिक हेल्थ

0: नहीं, भविष्य में हम उनपे टू मच रिलायंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बन चुकी हैं, सेफ एंड इफेक्टिव हैं, उनके बेहतर यूटिलाइजेशन एक अप्रोच होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि आज के समय में जिन जो वैक्सीन्स हैं, आने वाले समय में उससे अधिक वैक्सीन होंगी, और समय के साथ उनकी एपिडेमोलॉजी चेंज हो जाती है वैक्सीन की वजह से, तो उसके चलते फिर हो सकता है कुछ पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगानी पड़े। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन आज से 2 साल 3 साल पहले नहायत जरूरी थी, लेकिन अब कोई कोविड-19 वैक्सीन की बात नहीं कर रहा है। तो उसी समय समय के साथ अगर हम कुछ बीमारियों पर काबू कर लें तो उन वैक्सीन की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन नई करीब 145 ऐसी बीमारियां पहचानी गई हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन अंडर द डेवलपमेंट है, अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है।
1: ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, बट दे आर सेफ टू यूज? प्राइवेट मार्केट में कैसी कौन सी वैक्सीन है जिनको पॉपुलेशन की जरूरत है, को जरूरत है लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, या फिर मिसकंसेप्शन है जो कि गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती?
0: देखिए, कई सारी वैक्सीन हैं जो बच्चों में भी लगती हैं और एडल्ट को भी लग सकती हैं। जैसे कि निमोकोकल वैक्सीन है, बच्चों को लगाई जाती है लेकिन वो एडल्ट में भी बेनिफिशियल होती है। टाइफाइड की वैक्सीन और चिकन पॉक्स की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सारी एडल्ट के लिए भी होती हैं। फिर फ्लू वैक्सीन होती हैं इन्फ्लुंजा के लिए, और खासतौर से अब इन्फ्लुंजा मोर सिवियरिटी के साथ आता है तो उनका एनुअल वैक्सीनेशन होता है। तो ये सारी वैक्सीन अभी वेरी रिसेंटली शिंगरेक्स, जिसको हर्पी जोस्टर की वैक्सीन बोलते हैं, 50 साल की अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाती है, वो उपलब्ध हुई है। तो एक एंटायर रेंज ऑफ वैक्सीन है जो इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड होता है, और खासतौर से जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, जैसे कि कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या लिवर किडनी की इलनेस है, तो उन लोगों को इस तरह की वैक्सीन का काफी बेनिफिट होता है। तो जैसे कि जिनको भी कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, तो उन लोगों को काफी सारी वैक्सीन हैं जिनमें निमोकोकल वैक्सीन हो गई, हिप वैक्सीन हो गई, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, हर्पी जोस्टर वैक्सीन का एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। सिमिलरली टाइफाइड की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी एडल्ट एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन को लगाई जा सकती है। लेकिन वैक्सीन के बारे में मैं एक बात और कहूंगा कि हम यहाँ पर ब्रॉडर प्रिंसिपल्स की बात कर सकते हैं, लेकिन इनको इंडिविजुअल अप्रोच फॉलो करनी होती है। खासतौर से अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन नहीं लगाई जाती है।
1: HPV टीकाकरण की आदर्श आयु के बारे में काफी भ्रम है। क्या आप बता सकते हैं कि लोगों को कब टीकाकरण करवाना चाहिए? इसके अतिरिक्त क्या वृद्ध महिलाओं को इस टीके से कोई लाभ हो सकता है?
0: तो HPV वैक्सीन रिकमेंड की जाती है 9 साल से लेके 46-45 साल तक की फीमेल के लिए। तो यूजुअली इसका रिकमेंडेशन है कि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए। तो मोस्ट इफेक्टिव होती है वैक्सीन HPV वैक्सीन अगर 9 साल से 14 साल तक दे दी जाए, और अगर इस उम्र पर दी जाती है तो उसके 2 शॉट लगते हैं। 15 साल के बाद इस वैक्सीन के 3 शॉट की रिकमेंडेशन है, और इसमें कुछ वैक्सीन हैं जो 9 से 14 साल तक रिकमेंडेड हैं, कुछ 26 साल तक रिकमेंडेड हैं, और 45 साल तक भी यह वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऑफकोर्स 15 साल से 45 साल तक 3 शॉट्स की जरूरत होती है। बाकी ये वैक्सीन इतनी सेफ और इफेक्टिव है, दुनिया की करीब 120 कंट्री में इन वैक्सीन का यूज हो रहा है, और जो पद्धति या जो टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई जाती है तो उनके हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लेकिन याद रखने की बात है कि कोई भी वैक्सीन होती है, कितनी भी सेफ और इफेक्टिव हो, एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक उसका एडवर्स इवेंट हो सकता है। तो यह कहना कि वो कोई एडवर्स इवेंट नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन लोग उसी को कोट करते हैं। लेकिन रिस्क ऑफ सच एडवर्स इवेंट इज वेरी लो। बाकी कोई भी चीज बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन लोग उस रिस्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन जो उसका बेनिफिट है। वो बेनिफिट होता है कि ये वैक्सीन इतनी सीरियस इलनेस को बचाती हैं। इनफैक्ट HPV वैक्सीन के बारे में 6 टाइप के डिफरेंट कैंसर और कुछ अदर अदर टाइप ऑफ लीजन से भी प्रोटेक्ट करती है, तो दे आर वेरी इफेक्टिव।
1: अब हम अपने साक्षात्कार के सबसे रोमांचक और सबसे जानकारी पूर्ण भाग पर पहुंच गए हैं। मिथक या तथ्य? मैं टीकाकरण के बारे में कुछ हानिकारक गलतफहमियों के बारे में बात करूंगी। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर उनका खंडन करें। मिथक नंबर एक, रोगाणुओं के संपर्क में आने के कारण भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही मजबूत होती है, इसलिए उन्हें टीकों की आवश्यकता नहीं है।

0: जो बात कर रहे हैं कि इस तरह की धारणाएं होती हैं कि हमें रेगुलर एक्सपोजर होता रहता है विभिन्न पैथोजन से, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमें बीमारियां नहीं होंगी, यह पूरी तरह गलत है। आइए इसको एक साइंटिफिक नजरिए से समझते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई पैथोजन आ जाता है, अर्थात हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन से लड़ रहा है, तो ऐसे में अगर दूसरा पैथोजन आ जाता है जो उस पर अटैक करता है हमारे शरीर पर, तो चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही बिजी है, हमारे जो फाइटर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, एक बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उसका मतलब वो दूसरी बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा अगर हमें रेगुलर इन्फेक्शन होंगे और बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसमें अगर सेम पैथोजन फ्यूचर में इन्फेक्शन करता है, जैसे पास में इन्फेक्शन है, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो उसको पहचानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पैथोजन, कोई भी इन्फेक्शन होगा उससे लड़ने के लिए तैयार होगा। तो ये सब गलत धारणा है। मैं दोहराना चाहूंगा कि बेहतर तरीका है कि हम अपने शरीर को किसी भी बीमारी से बचाएं, और रिपीटेड इन्फेक्शन हमें बाकी इन्फेक्शन के लिए प्रोन बनाते हैं, ना कि उनसे प्रोटेक्ट करते हैं।
1: मिथक नंबर 2, वैक्सीन केवल वैश्विक राजनीति नियंत्रण और कॉरपोरेट लालच का एक उपकरण है।
0: यह निश्चित रूप से पूरी तरह एक मिस इन्फॉर्मेशन है। लोग जिस आधार पर इस आर्गुमेंट को देते हैं, वो कहते हैं कि वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में बनती हैं, तो उनका इंटरेस्ट होगा। लेकिन याद रखने की बात है कि वैक्सीन भले ही प्राइवेट सेक्टर में बनती हो, और कोई मैन्युफैक्चरर ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर है तो उसे प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वो एक लॉजिकल सी बात है। लेकिन वैक्सीन लगाने का जो निर्णय होता है, वो एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट लेते हैं, था ऐसे लोग निर्धारित करते हैं जिनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता कि वैक्सीन लगे या ना लगे। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मेडिकल डॉक्टर और टेक्निकल एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो ये देखते हैं कि अगर इस वैक्सीन को लगाने से फायदा होगा तो ही उसका रिकमेंडेशन किया जाता है, अगर फायदा नहीं होगा तो नहीं रिकमेंड किया जाता। तो उन लोगों का जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, उनका इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता है, उनका पब्लिक इंटरेस्ट होता है कि अगर ये वैक्सीन उपलब्ध है तो जनता को कैसे पहुंचे। फिर बात इन्हीं लोग ही करते हैं जो कहते हैं कि अच्छा, अरे इनका किसी प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट है, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन नहीं बनाता, वो इंडस्ट्री वैक्सीन नहीं बनाती, तो कई सारे लोगों का उसमें बीमारियों की वजह से गंभीर बीमारी हो सकती थी, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो जस्ट बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ने वैक्सीन बनाई है या कुछ लोगों का उसमें पैसा लगाया, हमें उसे शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। और अंत में एक इंटायर प्रक्रिया होती है, वैक्सीन बनाना एक प्रक्रिया है, वैक्सीन के बारे में निर्णय लेना एक प्रक्रिया है, और अंत में मतलब लोगों को उसमें लगवाना लोगों का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई चिंता कि वैक्सीन सुरक्षित है, और वैक्सीन बनाने वालों का वैक्सीन लगाने के निर्णय में कोई रोल नहीं होता है।
1: मिथक 3, रोग प्राकृतिक है, हमें उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: यह भी एक अधूरे टेक्निकल लॉजिक पर आधारित बात है कि वैक्सीन की उस प्रक्रिया को रोकती है। याद रखने की बात है कि अगर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन होता है, तो उसके दो आउटकम हो सकते हैं कि एक तो व्यक्ति को उसके बाद रिकवर हो जाएगा और उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और दूसरी आउटकम होगी कि व्यक्ति को गंभीर बीमारी होगी और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन है, वो बीमारी उसे ठीक होने की संभावना भी रखता है और साथ में गंभीर बीमारी की भी संभावना रखता है। तो यह इम्यूनिटी डेवलप करने का अच्छा तरीका नहीं है। जबकि अगर वैक्सीन ली जाए, तो हम जानते हैं कि वैक्सीन जो गंभीर बीमारी होने की संभावना को जीरो कर देती है और निल कर देती है कि वैक्सीन लगाने पर गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन इम्यून प्रोटेक्शन अर्थात इम्यूनिटी उससे बन जाएगी। तो वैक्सीन वो सब फायदे देती है जो एक नेचुरल इन्फेक्शन दे सकता है विदाउट एनी रिस्क। जो वैक्सीन में वो रिस्क नहीं होते जो नेचुरल इन्फेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई कहता है कि हम तो नेचुरल इन्फेक्शन करेंगे और उससे प्रोटेक्शन देंगे, तो ये अपने हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है। हाँ, याद रखने की बात है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें वैक्सीन नहीं है, तो उनमें हमारे पास चारा नहीं है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। लेकिन कई सारी बीमारियां जिनमें हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, और गंभीर बीमारी होने पर उसका खर्चा और उसके परिवार के ऊपर उसकी जो मार है वो बहुत

0: पड़ेगी, उससे बचने के लिए वैक्सीन ही बेहतर तरीका है। तो ये चॉइस नहीं है कि वैक्सीन कराएं या नेचुरल इन्फेक्शन इम्यूनिटी डेवलप करें, तो वैक्सीनेशन इज द ओनली राइट चॉइस।
1: मिथक नंबर चार, गर्भवती महिलाओं को कभी भी कोई भी टीका नहीं लगाना चाहिए।
0: तो इसमें ऐसा है कि प्रेगनेंसी में जो भी वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए वो एक तो फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह के बाद ही दी जानी चाहिए। सारी वैक्सीन प्रेगनेंट वुमेन को नहीं दी जाती हैं, कुछ वैक्सीन जो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली रिकमेंडेड की जाती है, जैसे टीटी की वैक्सीन, टिटनेस टॉक्साइड हो गया, और साथ में असलपटेसिस और डीटेप नाम की वैक्सीन भी आती हैं, इनको भी प्रेगनेंसी में दिया जाता है, इनका बेनिफिट होता है। क्योंकि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है वो जब बाहर की दुनिया में आता है तो उसके बॉडी में कुछ चीज़ों के अगेंस्ट रेसिस्टेंस नहीं होता, तो उसको हम डेवलप करना कराने का तरीका है कि प्रेगनेंसी में मदर को वैक्सीन दे दीजिए, तो जो मदर में जो एंटीबॉडी बनेंगे वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में भी आ जाएंगे। तो बच्चे को कुछ वैक्सीन खासतौर से 6 वीक के बाद दी जाती हैं, तो जब न्यू बॉर्न बर्थ से 6 वीक तक बच्चे के पास प्रोटेक्शन का अकेला चारा होता है वो होता है कि मैटरनल एंटीबॉडी, जो जब यूटरस में था बच्चा उस समय उसमें आ गई थी मदर के माध्यम से, ये बच्चे में एंटीबॉडी आई वो उनको प्रोटेक्ट करती है। इसलिए सारी वैक्सीन प्रेगनेंट वुमेन के लिए रिकमेंड नहीं की जाती हैं, लेकिन कुछ वैक्सीन है जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड होती है कि इनको मदर को लगाना ही है, जिससे मदर को प्रोटेक्शन होगा और बच्चों को भी प्रोटेक्शन होगा। फिर बात आती है कुछ लाइफ सेविंग वैक्सीन, जैसे कि अगर डॉग बाइट है, रेबीज की वैक्सीन है, तो वो इतनी लाइफ सेविंग है कि आप इरेस्पेक्टिव व्यक्ति प्रेग्नेंट है नहीं है उसको वो वैक्सीन लगाई जाती है। तो वैक्सीन प्रेगनेंसी में बाकी लोगों की वैक्सीनेशन से थोड़ी अलग होती है, लेकिन कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी में बहुत महत्व रखती है।
1: मिथक पांच, एक समय में बहुत सारी वैक्सीन लेना एक व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को अत्यधिक भारी या ओवरलोड कर सकता है।
0: ओवर वैक्सीनेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं अभी बीच में अखबारों में पढ़ रहा था कि एक आदमी ने एक ही वैक्सीन को करीब 200 बार लगवाया, तो लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। अदरवाइज आपको रिकमेंडेड शेड्यूल है वो यूजुअली कुछ वैक्सीन में एक शॉट होता है, कुछ में 2 शॉट और 3 शॉट्स होता है। ओवर वैक्सीनेशन जैसा कुछ नहीं है। हाँ, याद रखनी बात है, सिर्फ रिकमेंडेड शेड्यूल फॉलो करना है, और अगर आप रिकमेंडेड गवर्नमेंट शेड्यूल या जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन का शेड्यूल फॉलो करते हैं तो उसमें ओवर वैक्सीनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हेल्थ ऑन एयर पॉडकास्ट सुन रहे थे, और अधिक जानकारियों, तथ्य प्रतिक्रिया और समुदाय को स्वस्थ रखने के सुझावों के लिए हमारी वेबसाइट www.healthonair.in पर जाएं। हमारे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ई बेरा अपने रेडियो साथी माते दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज मिले अपन भैया खेमचंद राजपूत जी से और उनसे जाने कि इनने जा विधा कैसे सीखी और अगर को और आदमी सीख वो चाहे तो ये विधा को कैसे सीखे और जे सब बातें करें अपन भैया खेमचंद राजपूत जी से। तो दोस्तों खेमचंद राजपूत जी से मिलवे से पहले अपन सुनते हैं एक बढ़िया सी फाख और लेते हैं फाख को आनंद। जी गा रहे हैं पंचमलाल फुटीराबाई। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और जब फाख सुनवे के बाद अपन मिले भैया खेमचंद राजपूत जी से।

रही लस्सी बनवाई, खातर हो रही मेहमानन की खिड़कन ढूंढत घर आई। के भजिया परसी जब समी ने संग में दारू मंगवाई, और समी मो कौन वाली जो जा देरी मुश्किल में पाई। लड़का बारो मूछ ऐट के दे रो जवाब करा रे, और 20,000 रुपया मैंने काल लाए।

संग चार जने को संग कुर्सी मेजे और पलंग तकी क्या जान है। कुंवर छिकाई भाई बकरी में रोरी से लड़काटी को भाई रोरी से लड़काटी चौल पे आकाड़े समझी ने समझ ने घर में चीको।

की चर्चा मड़वा करें रे सच के बरात भाई कगार पहुंचे जब समझी के द्वार खर्चा कह दो 60,000 सोची नहीं 1100 टीका की सात 5,000 बेला पर क्या समझी खाना तक नहीं का वो तेरी मुइया भाव ने घर जो आए पूछते जब घर वाई आग लगाओ पर क्या ब्याह में हमने रोटी ना खाई हाथ पाँव में टूटन हो रहा से दुख रावर कर आई सजना मोरे फिकर करो ना गानों में तो सब जाई गानों बिग गो साव चुके ना गानों बिग गो साव चुके ना

घर बिटिया जला देते हैं ऊ झूले पे जल गो ना। पंचम लाल खेरा गाछ रूके सबको करत इशारे, ओ मांगना मांगो तुम लड़का।

0: हाँ देखो दोस्तों, जो अपन सब्जन ने फाग सुनी और ई फाग को आनंद लव है। अब दोस्तों इनकी ई फाग के बाद अब अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और मिलते हैं भैया खेमचंद्र जी से। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम पता बताओ।
1: हमारा नाम पता है खेमचंद राजपूत।
0: खेमचंद राजपूत जी कौन से गांव से हैं अपन?
1: काशीपुरा।
0: काशीपुरा से। अच्छा खेमचंद जी, अपन बात करें गावे बजावे के संदर्भ में यानी कि विषय में, तो आप गावे बजावे में काय में रुचि रखते? गाऊ थे बजाऊ थे का काम करे?
1: हम सबसे ज्यादा गाते हैं।
0: अच्छा गाते हैं?
1: गाते हैं।
0: अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है कि आप गाते हैं। अच्छा गावे की आपको लगन कब से लगी, क्या साल कहते जब आप?
1: हम हमारी लगन थी हम सेम हमें विशेष जाना लगे थे कि जो जा चीज है जय जा चीज है गावो कैसे हो। करीबन हम 10 साल के भय थे और हम गावो संगे हमारे पिताजी जाते, हमारे सबसे पहले पिताजी जाते।
0: अच्छा पिताजी गाँव थे आपके?
1: हमारे पिताजी गाते तो हारमोनियम बजाते
0: बाजो पिताजी,
1: तो हम जाते उनके संगे पिताजी के संगे। तो हम देखते हमारे पिताजी गा रहे ऐसे बेगाते तो हम ले लेते।
0: अच्छा
1: और बेगाते सो हम ऐसो
0: होते
1: बैठते रहे। अब एक दार की बात है, हमारे गांव की पार्टी बहुत अच्छी हती अभी चल रही। तो गांव के ने सोची हमारे दादा गाते थे तो इतराजी होती गाँव का नाम कितना अच्छा गा रहा
0: हूँ
1: और अच्छा नहीं गा रहा रह रह जात। अब जैसे तुम भी जानते के बूढ़ो आदमी हुए
0: तो मतलब उसको गाते ही है
1: तो वैसे
0: सही है। हाँ।
1: तो हमें फिर ऐसी सोचा लगे सो एक हमारा दोस्त है बहुत अच्छा।
0: हाँ। का नाम दोस्त को?
1: गब्बर सिंह। गब्बर सिंह नाम है।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छा खासा दोस्त है।
0: हाँ।
1: तो उसने हमें बताया कि खेमू एक काम करिए।
0: हाँ।
1: कि तुम्हारे दादा की बहुत हूटिंग करत आदमी
0: आदमी
1: आदमी हमने की कैसे बोले तना कैसे गावे में हिचक जाता ना। तो हमने की ठीक है कान दो। तो हम सोचते रहे कुछ दिन।
0: हाँ।
1: तो हमने एक वंदना करी।
0: अच्छा अच्छा वंदना तुमने सीखी फिर?
1: हमने पहले वंदना ये देवी जी की वंदना। हाँ। ये कैस्टर में सुनी हमने।
0: अच्छा सुनी पहले
1: कैस्टर सुनी फिर कैस्टर सुन के हमने गाई।
0: हाँ।
1: तो गावे के बाद एक जगह हम गए ऐसे ही प्रोग्राम में हम चले गए। हमें लोग आने गए हम चले गए दो।
0: अच्छा तुम लगन हती?
1: हमें लगन हती दो चले गए हम की बिकड़ गए हमें जान दो। हम पिछाई पहुंच गए। अब इनने मंडली मल्लू गान लगी थी तो हम बैठ गए। तो हमारे जो दोस्त हैं उनने हमसे कही तुम गा दो एक। हमने कहा एक बंदना भी था बजना सुना था। वो गावे में हमें देख सुन कहते कि को गावे हमें जा रहे थे कि कबे जो बंद हो
0: कबे हम अपनो गाव।
1: तो हमने वो बंदना सुनाई।
0: बंदना कैसी हती?
1: बंदना हती

0: जी मारा ना,
1: ये हमने गाया। तो हमारा एक जो ढोलक मास्टर था उसने ढोलक इतनी गजब की बजाई, तो आदमी ने जो हमारे लोग बाग थे उनने जा सोची। तो दो तीन दिन बाद हमारे पिताजी को नीलवा गए, नहीं लुवा गया तो हमने की नीलवा जान दो, अब तो हम जा रहे हैं। हमने अपने पिताजी से कही तुम बंद करो, हमारे पिताजी बजाते बाजो भाई बजाते, तो जब जैसे बाजो बजा रहे तो जब तक बाजो ना बजे तो गीत ना हो जाए। तो कुछ दिन फिर हम गाने लगे, तो हमारे पिताजी अब मान लो
0: नहीं जाते,
1: अब नहीं जाते, अब इसलिए नहीं जाते कि अब बेबी सोचा कि अब हमारा लड़का भी गाने लगा, अब तो कहीं अगर जरूरी है तो हम अपने पिताजी को भी लुवा जाते। हमारा हमने खुद अपना स्वयं दुर्गा मंडल नाम से
0: मंडल खोला,
1: खोला।
0: अच्छा, आपने दुर्गा नाम से अपना मंडल खोलो, आपने गुरु की है मानो तो।
1: हमारे गुरु हैं एक गांव के हैं, हमारा दयाराम राजपूत है, हमारा गुरु भी है
0: दयाराम राजपूत
1: हमारे गुरु हैं।
0: अच्छा,
1: पूज्य गुरु हैं, हमने उन्हीं के गीत गाए हैं, अभी तक गाते चले आ रहे हैं।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: चलो बढ़िया बात है कि आपने देखो गुरु बनाओ, और बिना गुरु के तो
1: देखो बिना गुरु की तो ये कहानी होती नहीं है। अगर अपन कुछ भी गाना बजाना है तो गैर गुरु का तो अपन को
0: सही ज्ञान मिल ही नहीं सकता,
1: गुरु बिन ज्ञान।
0: हाँ,
1: है हाँ। एक कहावत है कि सुर बिन मिले ना सरस्वती, और गुरु बिन मिले ना ज्ञान, और ज्ञान बिना हैरान हूँ से ढूंढत वेद पुराण।
0: देखो कितनी बढ़िया बात है,
1: अगर अपन अपने पास गुरु है तो सबसे बड़ा
0: ज्ञान अपने
1: ज्ञान है, और गुरु नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं,
0: तो कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, जा तो आपने देखो गुरु जी की बात बता दी, अब एक संगे संगे आपने जो गीत गाव है ताराग्राम पे गाओ भी,
1: हम ताराग्राम में दो दफे गाया है,
0: गाया
1: है। तो हमने सब में पहले ताराग्राम में गाया था।
0: हाँ।
1: जो हम दर्शन खो आए केवरिया मैया खोल दो,
0: हाँ।
1: वो फुलवारी से फुलवा

0: लिए हमने ये गाया।
1: अच्छा, जय गीत गाया था आपने। देखो बहुत अच्छी बात है कि आपने जय गीत का। अच्छा एक बात और बताओ, इमें जो गावे बजावे में कोई विधा की बात आउत, अगर विधा की, तो आपको जो पता है कि अपने साल में 12 महीना हो, और 12 महीना में 12 प्रकार की अलग अलग विधाएं गाई जाती
0: है। जैसे अपना ये है, जैसे अभी मौसम ये फागुन का है, ये महीना फागुन का है, तो इस समय पे अपन को फाग अच्छी लगेगी।
1: अच्छा, मतलब ये मौसम में फागे तो
0: जैसे अपन ने कही, जैसे अब ये चल रही है, जैसे ये अपन गावन गावन होती है, ये कौन ये उनने कही के ये फलाने की आज घरे फागे होने, तो उनने कही बोला दे फागे हो जाए फलाने की, ये फाग जैसे अपन फाग हो तो चेतावनी हो,
1: फाग चेतावनी
0: चेतावनी, जैसे अपन ने चेतावनी गाई के उड़ गई सांच रज्जा, देखी कौन है उड़तन सांच रज्जा, उड़तन सांच रज्जा देखी कौन है, सो हमें बता दो भज्जा, वो गांव पुरा के सब बैठे रहे परखत रहे परखज्जा, देखी कौन है करतन सांच रज्जा। अपन को जो पतो नहीं है कि घट में से कबे
1: कड़ गई
0: सांच अपनी कड़ गई,
1: सही कह रहे,
0: गाँव पुरा के सब बैठे रहे सो परखत रहे परखज्जा, वो कड़ गई श्वास मिलो ना यार, वो देखत रहे देखज्जा, देखी कौन ने कड़तन श्वास रज्जा,
1: सही कह रहा।
0: गाँव पुरा के सब बैठे रहे, कुजिया दिखा रही,
1: हाँ काउ ने नहीं देख पाई,
0: वाह काउ ने नहीं देखी, अपन अपन ने खुद नहीं देख पाई के
1: कबे का
0: होने, सो ऐसी चेतावनी हमने ये

0: अपन ने घर बैठे
1: हाँ।
0: तो ये फाग है, जैसे फागुन का महीना है तो
1: हाँ।
0: फाग अच्छी लगे,
1: फाग अच्छी लगे सही।
0: तो सावन का महीना है तो जैसे सावन भरे ये गीत है, ये
1: झूला गीत,
0: ये झूला गीत है, तो जैसे मौसम है
1: बाहर
0: तो बहुत, जैसे अबे फागुन, जैसे अबे फागुन चल रहा हो तुम झूला गीत गा दो तो बस साजो लगेगा, फागुन में फाग ही लगे और सावन में झूला गीत साजे लगे। जैसे नौ दुर्गा है तो देवी भजन
1: अच्छे लगे,
0: अच्छे लगे
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो देखो जो, तो अगर एक बात और बताओ कि जैसे नए अपने युवा साथी हैं, अगर वे ई राग को सीख वो चाहें, जो विधाएं सीख वो चाहें, तो उन्हें कैसे सीख पाएंगे?
0: ऐसे ही सीख पाए जैसे हमने जो आपसे कहा है
1: हाँ।
0: कि जैसे हमें बहुत अच्छी लगन
1: हाँ।
0: लगन थी
1: हाँ।
0: अब जैसे अगर अपने पास लगन है कौन सी भी चीज
1: हाँ।
0: तो अपन वह चीज को कर ले,
1: अपन
0: अपन लगन ना लगाए वह चीज को तो अपन नहीं कर सकते। क्या हमें गावे बजावे की लगन थी
1: हाँ।
0: आज हम हमें चार आदमी
1: सही है सीख गए, आप
0: सीख गए, चार आदमी बुला रहे,
1: इज्जत भी बढ़ गई,
0: इज्जत है,
1: सम्मान मिला,
0: अबे सम्मान है। जैसे हम अपना यही काम है, कौन सा भी काम है, तो अगर हम घर भी बैठे अगर खबर आ गई कि फलानी जगह जाने हैं तो हम चले गए, पहले चले गए तो अब जानने लगे आदमी कि फलाने गांव में
1: फलाना आदमी,
0: फलाना आदमी है, उसको खबर दे दो या चिट्ठी दे दो या फोन कर दो
1: हाँ।
0: तो हम एक दिन नहीं बैठे रह रहे,
1: हमें
0: इस लगन से बहुत अच्छा है, एक दिन भी बैठे नहीं रह रहे, कुछ ना कुछ हमें कार्यक्रम मिलते रहते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। तो देखो जो अगर सीख वो चाहे तो उसको पहला तो लगन लगाने पड़े,
0: अपने पास अगर लगन है तो सीख सकते, लगन नहीं है तो नहीं सीख सकते, कोनो भी काम है। अगर अपन घर बैठे, अपन जैसे इतने बैठे फालतू घरे बैठ गए तो घरे बैठे रहे,
1: बिल्कुल सही बात है।
0: अगर अपन दिमाग से कुछ सोचे तो कुछ कर ले, अगर सोचे ही ना तो कुछ नहीं कर पाओगे।
1: बिल्कुल,
0: सबसे मेन चीज ये है अगर अपने पास लगन है तो सबसे उत्तम है, और लगन नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकते। हमारे पास लगन थी
1: हाँ।
0: हमने गाना बजाना सीखा है,
1: बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा तो अब जाते देखो अपनी बात हो गई, अच्छा चलत चलत आप और जो अपनी अपन को जब बात अपनी सुन रहे उनसे अपन चलत चलत का संदेश दे चाहे?
0: संदेश जो ही है कि भज्जा जैसो हम लगन लगा रहे ऐसी सब जन ही लगाए, बहुत अच्छी बात रहे। जैसे हम एक शेर कह रहे
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हसूले से, खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। क्यों
1: हाँ।
0: कि अगर अपन में सच्चाई है, हर चीज है, दिमाग है तो अपन हर चीज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: सैर करने में चला
1: हाँ।
0: कुछ हमारे दिल में अरमान थे
1: हाँ।
0: और एक तरफ जंगल तो एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा
1: हाँ।
0: उसके कुछ बयान थे
1: हाँ।
0: और चलने वाले संभल के चलो
1: हाँ।
0: हम भी कभी इंसान
1: थे।
0: अगर
1: हाँ।
0: अपने पास क्षमता है तो हर चीज कर सकते हैं,
1: और
0: क्षमता नहीं है तो कुछ नहीं कर
1: कुछ
0: सकते,
1: सकते। चलो जा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब एक संगत देखो अपनी बातचीत बिलात हो गई, और अगर आपको कौन जो सबसे अच्छो आपको गीत अभी तक लगो हो कि हमने अपने जीवन में जो अच्छो गीत अच्छो आओ तो जो आपको पसंद हो वो कितने के कादो लाने हैं का?
0: हमारे पास तो अब लेने तो ऐसी है कि हमने तो हमने आपको बताया है कि हमारे दादा गाते थे, सबसे अच्छा हमने अपने दादा का सीखा था।
1: अच्छा क्या सीखा था
0: हमने
1: वो अभी आपको याद है?
0: हमें याद है
1: हाँ।
0: बहुत दिन पहले सीखा था
1: अच्छा।
0: जब हम शुरू में
1: हाँ।
0: गावो सीख ही रहे थे,
1: अच्छा, सीख रहे
0: तो हमारे दादा गा रहे थे।
1: अच्छा का गाओ तो?
0: तो हमारे दादा ने गाओ तो एक जो गीत जो चित्रकूट धाम
1: हाँ।
0: है अपना राम राजा के
1: हाँ।
0: माध्यम से सुनाओ तो
1: हाँ।
0: सो हम सुनत रहे, सो हमने सीख लाओ
1: हाँ।
0: सो वो है

0: क्या है भाई साहब, ये साजबाज में भजन बहुत
1: हाँ
0: अच्छो
1: बहुत
0: गीत
1: अच्छे
0: लगा
1: हैं भाई,
0: जो
1: मैंने बहुत
0: जो
1: अच्छे
0: हमने गाया था एक
1: लगा है।
0: जगह,
1: हाँ
0: तो गाया था जब
1: हाँ
0: साजबाज में हमने गाया था, तो हमारी लोग

0: बहुत अच्छी
1: तारीफ की,
0: तारीफ की। तो हमको घर लो आ गए, घर लो आके हमको भोजन कराए, बहुत अच्छी
1: सम्मान मिलो,
0: सम्मान मिलो।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो आपने भैया इतनों कीमती समय निकाल के हमें दो खिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ तो देखो दोस्तों, जी तो हते भैया खेमचंद्र जी जिनने बताओ है अपन को कि हमने कौन प्रकार से जो गाबो बजाबो सीखो है, और अगर को सीख वो चाहे तो वो की प्रकार से सीख सकत। अब दोस्तों एक संगे संगे आप उन्हें कह रही हो कि माता दिन भैया ब्लाद देर से खेमचंद भैया से बातें करवा रहे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, आपके लाने मनोरंजन को हमें ध्यान है, सो आओ मनोरंजन के लाने सुनाते अपन एक बढ़िया सी फाखों, लेते फाख को आनंद। जी फाखों गा रहे हैं भूपेंद्र यादव जी। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
3: अरे धनुष उठा ले कर मेरा, मां धनुष उठा ले कर।